आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

लगता था नशे में तुझे भूल जाऊंगा, मुझे लगता था नशे में तुझे भूल जाऊंगा, तू और याद आई तो लगा ऐसा नहीं करते। तू और शराब दोनों एक जैसे हो, दोनों नशा करते हैं, वफा नहीं करते।

0: Not every restaurant becomes an experience, but Soul Flavorscape of India is a journey through taste, tradition, and unforgettable flavors.
1: From crispy Delhi-style aloo tikki chaat, flavorful samosa chaat, to the signature Soul Dal Bukhara.
0: Enjoy fresh sizzling veg and non-veg starters paired perfectly with oven-fresh chur-chur naan made with love and fresh ingredients.
1: Planning your birthday, wedding, graduation party, corporate gathering or family celebration?
0: Ask about customized catering menus at reasonable prices. Crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
1: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
0: Whether it's dinner with family, chai with friends or your next big event. Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors. Experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरी डे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करे 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.
3: कत्ल करती है निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो. हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो.

इसको। आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा एक

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham,

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

KCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

बोतल मेरा पत्थर का ब्रेक नहीं कर सकती गाने हेटरों के मुंह पर जाके बजे बूम क्लियर है विजन मेरी आई डोंट नीड नो ज़ूम ऋतिक नहीं फिर भी मचे की धूम दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम

0: देगा तभी तो बादशाह को कोई टेस्ट नहीं करता. I'm a hustler, A1, lifestyle A1. ए मुझे ना सिखाओ घंटे पे फेम, एक ही बस एम, जो जलते हैं उन्हें और जलाओ. हिटरों की छातियों पे रख दीवे बाल के टोर मरावा के तिछोरे करनाल के डैश अपनी दिल्ली से देरा दून, दोनों हाथ उठा के हवा में बेबी घूम.
1: अरे क्यों पड़े हो चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई

सुन लिए आपने यूपी के बोल, आता ऐका महाराष्ट्र से ढोल।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

आता माझी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए, कमर पे तेरी बटरफ्लाई, बॉडी तेरी मक्खन जैसे, खाने में बस तू बटर खाए। कम ऑन बेबी किकेट किकेट, काटू तेरी टिकेट टिकेट, खेलता नहीं क्रिकेट विकेट, पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

listening to WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR.

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.

सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: Hi Carrie, get ready for dosa bundi. Discover our signature variety dosas, including colorful carrot dosa, beetroot dosa, and more. Made with fresh natural vegetables and packed with flavor. Refresh your day with our cold pressed juices and enjoy our delicious sandwiches made with fresh vegetables, paneer, and homemade sauces. At Dosa Bandi, every dish is carefully prepared with fresh ingredients to nourish your body and delight your taste buds. Join us every Saturday and Sunday from 8:30 a.m. to 2 p.m. and Wednesday through Friday from 5 p.m. to 10 p.m. We look forward to welcoming you.
2: To 4101 NC Highway 55, Cary, North Carolina 27519.
3: Dosa Bandi, authentic flavors, inspiring journeys made with love.
4: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।
5: 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोका।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्यूल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

सादिसी हो आशिकी हो मुझे पता है तुम किस गली हो किस मोहल्ले जात की हो मुझे पता है तुम खुश नहीं हो दिखती तो आजाद भी हो पर दुनिया तो तुम्हीं से चलेगी मैं एक लड़का हूँ तुम मेरे बाद भी हो

0: हेल्दी लिविंग मीट्स इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.
2: 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM. पक्का देसी, पक्का लोकल.

देखती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याल दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

रेडियो नायरा पर बजेगा सिर्फ बेस्ट हिट्स। रेडियो नायरा 101.9 एफएम, 99.9 एफएम, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

to WCMC-FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM,

0: सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।
2: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस, बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट, ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स।
1: फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की चाट, फ्लेवरफुल समोसा चाट, टू द सिग्नेचर सोल दाल बुखारा,
2: एंजॉय फ्रेश सिजलिंग वेज एंड नॉन वेज स्टार्टर्स पेयर्ड परफेक्टली विद ओवन फ्रेश चूर चूर नान मेड विद लव एंड फ्रेश इंग्रेडिएंट्स।
1: प्लानिंग योर बर्थडे, वेडिंग, ग्रेजुएशन पार्टी, कॉर्पोरेट गैदरिंग और फैमिली सेलिब्रेशन?
2: Ask about customized catering menus at reasonable prices, crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
1: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
2: Whether it's dinner with family, chai with friends or your next big event, Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors, experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
0: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।
3: You're listening to WCMC-FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।

0: इस माहौल गाने के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी ऑन 101.9 एफएम 99.9 एफएम एचडी 449 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल एंड ऑल। वेल हमारे ट्रायंगल में एनुअल क्रिसमस इन जुलाई सेलिब्रेट होने वाला है। द फेस्टिवल किक्स ऑफ ऑन फ्राइडे विद द फुल लाइनअप ऑफ एंटरटेनर्स एंड फूड वेंडर मेकिंग डाउनटाउन वेस्ट जेफरसन एंड परफेक्ट स्पॉट टू स्पेंड द इवनिंग। Saturday bring art and craft, specialty food and local non-profit. The festival extends throughout the downtown area along the Jefferson A. With the sidewalk clear for walking and browsing the shop, Ash Country Art Council hosts children activity performance through the street showcasing their magical talent and Santa and Mrs. Claus arrive straight from the North Pole. मजा आने वाला है, मत करिए, जरूर एंजॉय करिए। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।
1: रेडियो सिटी पर आप सुन रहे हैं तौबा तौबा, संग कंपोज्ड एंड रिटन बाय करण औजला।

आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

ये ऑसम गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for the 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu Naira Fame. हूँ आपके अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल डोंट एंड टॉक. वेल हमारे ट्रायंगल में ग्लोइंग रॉक चैरिटी हॉर्स शो हंटर जंपर फोर्थ डिवीजन सेलिब्रेट होने वाला है. द हंटर जंपर डिवीजन ऑफ ग्लोइंग रॉक चैरिटी हॉर्सेस शो फोकसेस ऑन फीट ऑफ एलिजिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ विद द फोर्थ जंप ऑफ द टर्न दैट हॉर्सेस एंड राइडर्स हैव टू नेविगेट. This particular part of the show serve as preliminaries and final that show shortly after. Participants decorate their stable for added flair. Food truck will be offered delicious treat and vendors their theme wares. मजा आने वाला है, मिस मत करिए, जरूर एंजॉय करिए. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा. पका देसी पका लोकल.

0: इस माहौल गाने के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी ऑन 101.9 FM, 99.9 FM, HD4, 49 AM, 99.9 FM, HD3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल टूल्स एंड टॉक्स।
1: वेल हमारे ट्रायंगल में बहुत जल्दी पीच पाथवे सेलिब्रेट होने वाला है। वी आर हाइडिंग 20 क्राफ्टेड ग्लास पीचेस अलोंग ट्रायल थ्रू आउट द सैंड हिल एंड इट्स योर जॉब टू फाइंड देम। Each glass of peach is one of a kind of treasure waiting to be discovered, created by friends at Starbucks. List up your hiking shoes, grab your friend or family, and hit the trail for this fun. Free adventure celebrating the beauty of nature and spirit of summer in Sandhill. Each day on our live social media will announce trail for the hunt, so stay tuned. Filhal ke liye jaiye gane, sundariye Monica ke saath Radio Naira, paka desi, paka local.

Mark it out, Ari Kavad, one more time. Welcome, Haji, on 101.9 FM, 99.9 FM, LG4 for 90 AM and 99.9 FM, LG3 for Telugu. Naira se, main hoon aapki apni Monica, aur aap sun rahe hain Triangle Tools and Talk. ट्राइंगल में बहुत जल्दी विंडो वर्ल्ड 450 नॉट विक्स ओरो स्पीडवे सेलिब्रेट होने वाला है. डोंट मिस द विंडो वर्ल्ड 450 एट नॉट विक्स ओरो स्पीडवे. एक्सपीरियंस थ्रिलिंग नास्कर एक्शन लाइव. फील द रोर ऑफ इंजन एंड प्योर एक्साइटमेंट ऑफ हाई स्टेक्स रेसिंग. पॉइंट रेसिंग इज बैक एट नॉट विक्स ओरो. इट्स समर टाइम एंड स्पेक्टेकल्स एट वन ऑफ द नास्कर्स मोस्ट हिस्टोरिक ट्रैक. Don't miss epic tailgate and high-speed racing among the NASCAR's elite driving and team. The race is on. Multi-platinum country hitmaker is waiting for you. Filhal kahin jaiyega nahi, sun rahiye Monica ke saath Radio Naira, pakka deshi, pakka local.

ये अमेजिंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4 और 49 AM एंड 99.9 FM HD3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल डुनसन टॉक। पता है बहुत थके आप सुबह सुबह ये वर्कलोड देखकर, बट डोंट वरी, आपको रिलैक्स फील करने के लिए ढेर सारी मस्ती कंटिन्यू रहने वाली है। वैसे आपने कुछ नोटिस किया क्या? नहीं ना, हम बातें और मस्ती करते करते सेकेंड आवर में प्रवेश कर चुके हैं और स्टिल हमारी बातें कंटिन्यू रहने वाली है। वेल, आपके साथ बातें और मस्ती तो कंटिन्यू चलते रहने वाली है, बट हमारे ट्रायंगल में क्या हलचल हो रही है, कहाँ क्या होने वाला है, कौन से इवेंट होने वाले हैं, सब कुछ आपको बताने वाली हूँ और ढेर सारे धमाकेदार गाने भी बजते रहने वाले हैं। इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

ये माइंड ब्लोइंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 एफएम, 99.9 एफएम एचडी 449 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु नायरा से। मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टूल्स एंड टॉक्स। वेल माय ट्रायंगल में फोर्थ फ्राइडे इन टाइम सेलिब्रेट होने वाला है। जॉइन अस फॉर द टीडी इज फोर्थ फ्राइडे इन जुलाई एंड गेट रेडी टू डांस एंड टैगिंग ऑन द स्क्वायर। द फैबुलस जेवल्स विल बी परफॉर्मिंग लाइव एट द प्लाजा। Slip into the rhythm and Carolina shares a smooth, easygoing partner dance on right here in the Southern property match the beach music in good beat. Whether you are a seasoned dancer or just want to try, the square will be filled with the friendly faces, lively tune and plenty of fun. Come out, grab and partner and let the music move to you. Lal kahi jaiyega nahi, sundariye Monica ke saath Radio Naira, pata desi, pata local.

दिलों का इश्क ही तो देता फिरता है गवाही, वरना बता खुदा होने का सबूत क्या है।

आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्राइंगल टून्स एंड टॉक, उन खूबसूरती जो नजरों में नहीं तो दिल में बस जाए। पेश है 92.5 सिल्वर ज्वेलरी का शानदार कलेक्शन, जिसमें है 22 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग की रॉयल चमक, हर डिजाइन में छुपी है बारीकी और प्रीशियस और सेमी प्रीशियस पत्थरों की अनोखी दमक। चाहे शादी हो या खास दिन हो या कोई त्योहार हो, हर मौके पर आपको दे एक एलिगेंट रॉयल लुक, क्योंकि आप सिर्फ ज्वेलरी नहीं पहनते हैं, आप पहनती हैं अपनी खुद की पहचान। 9 जेम्स ज्वेलरी, जहां हर गहना बनाता है आपकी खूबसूरती की पहचान। बुक ओनली बाय अपॉइंटमेंट। 9 जेम्स ज्वेलरी, वेस्ट कैरी 27519। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं +1 214 699 9454। फिलहाल कहीं जाइए या नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

ये ब्यूटीफुल गाना आपने सुना ऑन 101.9 एफएम, 99.9 एफएम एचडी 4 फॉर 90 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु। नायरा सेम है, हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल डूज एंड टॉक्स। विलियम ट्रायंगल में बहुत जल्दी ग्रासी क्रीक एंड जेम मिनरल शो होने वाला है। एक्सप्लोर अ वाइब्रेंट वीक लॉन्ग आउटडोर शोकेसेस ऑफ जेम मिनरल फॉसिल ज्वेलरी एंड लैपिडरी सप्लाई एट द ग्रीसी क्रीक मिनरल एंड जेम शो इन स्प्रूस पाइन। With more than 60 vendors from around the world, this family-friendly event offers something for collector and enthusiasts alike, from stunning gemstones to laboratory tools to unique specimens. Hosted by Praver, Fire and Refuse to support local equipment purchase, the show features free admission and passing on-site food and open to all ages. मजा आने वाला है, मिस मत करिए, जरूर एंजॉय करिए। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा। पक्का देसी, पक्का लोकल।

Welcome here on 101.9 FM, 99.9 FM, SG4, 4090 AM, and 99.9 FM, SG3 for Telugu. Naira Seem, I am your host, Monica, and you are listening to Triangle Dunes and Dogs. Kaha tha na maine aapse ki entertainment ki koi kami nahi hogi. Dekha, baaton baaton mein third hour mein pravesh kar gaya hai, aur still hamari baatein continue rehne wali hai. ढेर सारी मसालेदार खबरें ट्रायंगल की कुछ अपडेट्स मैं आपको बताने वाली हूँ, पर अगर आप मुझसे बातें करना चाहते हैं, कुछ कहानियाँ कुछ किस्से शेयर करना चाहते हैं, या किसी लव्ड वन को आप बर्थडे विश करना चाहते हैं या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और 9192944800 पर, और सुन सकते हैं ओनली ऑन रेडियो नायरा पर. फिलहाल और एक चाय का कप तैयार कर लीजिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल.

ये ब्यूटीफुल गाना आपने सुना ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4, 40 90 AM, 99.9 FM HD3 फॉर तेलुगु नायरा फेम है हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल डूज एंड टॉक। वेल हमारे ट्रायंगल में 38 नॉर्थ कैरोलिना डक अनलिमिटेड बैंड द बिलफिश टूर्नामेंट होने वाला है। Come experience one of the most exciting and meaningful event on the Crystal Coast, the NCDU Billfish Tournament. More than just a fishing competition, this tournament is a celebration of conservation, sport fishing, excellence and coastal tradition that has made a lasting impact since inaugural year in 1989. This is must-see event as the combined high-level show of sport fishing and powerful conservation mission. Over the 3 years, the big tournament has helped find our billfish protecting effort, working alongside federal agencies to establish minimized size requirement for blue marlin and promoting ethical fish practices that are now standard across East Coast. मजा आने वाला है, मिसमत करिए, जरा एंजॉय करिए। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: WCMC-FM, Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270DT Durham, 101.9 FM, WDUR Durham, 1490 AM.
1: तो जी हाँ दोस्तों, हम आ गए हैं एक बार फिर से दोबारा बैक ऑन दिल से देसी लाइव. आई एम योर होस्ट वैन. आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा. यू कैन ट्यून इन ऑन 99.9 एफएम एंड यू कैन आल्सो ट्यून इन ऑन 101.9 एफएम एंड 1419 एएम. तो आज है सैटरडे, बारिश पड़ रही है. आई डेस्परेटली नीड अ कॉफ़ी बिकॉज इतनी थकान है. देर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन हियर, इवेंट्स पे इवेंट्स. मुश्किल से नींद पूरी हो रही. तो आई मे साउंड लाइक यू नो अभी मैं सो के उठाऊँ, बट नहीं. You know, there's a lot going on. So, पहले थोड़ी बहुत ही बात कर लेते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे. तो टुडे इज द लास्ट डे फॉर द भगवत कथा हियर, लाइक लेस सिक्स डेज. बहुत कुछ चल रहा है. टुडे इज ऑल्सो एन आषाढ़ी एकादशी. सो गुड लक एंड वार्म कंग्रेचुलेशंस एंड ग्रीटिंग्स टू एवरीबॉडी. आज एक बहुत ही बड़ा दिन है. लॉट ऑफ पीपल आर फास्टिंग. तो आप जहीं पे भी हो, सबको नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरी तरफ से. आप गाड़ी में हैं, अगर आप काम पे जा रहे हैं, किचन पे हैं, व्हाट एवर यू डूइंग, ट्यून इन. एंड आज का टॉपिक थोड़ा धमाकेदार है. तो मैं हूं आपका वैन वंस अगेन. हम मिलते हैं हम एवरी सैटरडे. टुडे इज टू आवर शो. आज का एपिसोड थोड़ा डिफरेंट है. आज मैं आपको यू नो अपना ही मिरर दिखाने वाला हूं. तो दिस इज आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस. और इसके लिए मुझे यू नो ऑनेस्टली नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है बिकॉज आई हैव सीन दिस थ्रू. और एक बबल जो बर्स्ट हो रहा था मेरे अंदर, आई फील लाइक यू नो आई नीड टू टॉक अबाउट दिस. मे बी यू नो आई माइट गेट सम बैकलैश फॉर दिस, बट इट्स ओके. यू नो दिस इज व्हाई आई एम हियर. थोड़े से मीठे, थोड़े से तीखे टॉपिक्स होते हैं. समवन माइट लाइक इट, बट समवन माइट नॉट. बट इस टॉपिक के लिए मैंने बहुत लोगों से पहले सोचा विचारा कि शुड आई टॉक अबाउट दिस और नॉट. समबडी आई होप आई डोंट ऑफेंड एनीबडी, बट इट्स इम्पोर्टेंट टू टॉक अबाउट दिस. और मुझे एक इंसान ने नहीं कहा कि इसके बारे में बात मत करो. तो आई फील लाइक यू नो व्हाई नॉट. अगर इतना ही कुछ सब बोल रहे हैं तो वी शुड टॉक अबाउट इट. तो यू नो ये कोई आउटसाइडर का टॉपिक नहीं है, ये कोई इमिग्रेशन बिल नहीं है, ये कोई वीज़ा का चक्कर नहीं है. आज हम अपनी खुद की बात करेंगे, अपनी कम्युनिटी की, राइट. एक ऐसी चीज़ जो बहुत लोग डिस्कस करना चाहते हैं बट ओपनली कर नहीं रहे हैं. वो उनको पता है कि दिस इज़ रॉन्ग बट नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट इट. तो ये टॉपिक बेसिकली क्या है, राइट. इट्स अ सिविक सेंस. ये बहुत उछल के आ रहा है मीडिया में आजकल. ये कभी इतना नहीं था, बट यू नो लेटली देयर्स बीन अ लॉट ऑफ दिस वीडियोज, रील्स, सब जगह पे चल रहा है. और कहीं ना कहीं पे कम्युनिटी हमारी इस चक्कर में टारगेट हो रही है. जो इनोसेंट हैं वो भी इसके अंदर हाईलाइट हो रहे हैं बिकॉज जब यू नो जहाज डूबता है तो अच्छे बुरे सबको लेके डूबता है. जिसकी गलती थी उसकी वजह से नहीं डूबता, सिर्फ उसको लेके नहीं डूबता. तो दैट्स प्रीटी मच व्हाट इज हैपनिंग हियर, राइट. हमारा बिहेवियर पब्लिक टेंपल, आई मीन यू नो पब्लिक प्लेसेस पे क्या है, टेंपल्स में, इवेंट्स में, पार्क्स में, रेस्टोरेंट्स में, हमें कैसे लोग देखते हैं, राइट. आपको कैसे लोग देखते हैं जब ये सिचुएशंस हो रही होती हैं. तो पहले ही मैं एक क्लियर कर देना चाहता हूँ बात, राइट, कि यू नो ये किसी को टारगेट करने के लिए नहीं है. पहली बात तो इट्स जस्ट अबाउट द अवेयरनेस. एंड यू नो ऑनेस्टली जेन्युइनली आई फील लाइक कि बहुत लोगों को नहीं पता होता एंड दे आर जस्ट वायर्ड एंड ट्यून इन. और एक जनरेशनल गैप है, एक यू नो बैक इन होम हमारी उसी तरीके से काम चलता है. तो वी आर जस्ट वायर्ड, अवर ब्रेन इज वायर्ड लाइक दैट. तो नेचुरली एक टेंडेंसी होती है कि यार यू नो लेट्स जस्ट डू द सेम थिंग, राइट. मगर अब यहाँ पे हम नवे देश में, नवे घर में, नवी कंट्री में, सब कुछ नवा है, राइट. तो वी हैव टू चेंज एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट टुडे. तो मैं खुद इस कम्युनिटी का हिस्सा हूँ. मैं, मेरा परिवार भी यू नो कभी ना कभी इन चीज़ों में यू नो गिल्टी रहा होगा. लेकिन हम अपने बच्चों के लिए, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए और यू नो देश में अपनी इमेज के लिए लाइक कुछ बेटर चाहते हैं, राइट. लाइक वी हैव अ वेरी हाई रिगार्ड एंड बहुत अच्छी एक यू नो कॉन्ट्रीब्यूशन है. मगर ये एक डार्क साइड भी है. सो And it's always good to, you know, accept what is going wrong. ऐसा नहीं है कि भाई, you know, everybody is perfect. गलतियाँ होती हैं उनसे हैं जो, you know, they are involved in things और काम करते हैं तभी गलती होती है. तो something is going on, right? And so that's why I want to talk about it. कि like, you know, कुछ better करें. क्योंकि बहुत सारे events आ रहे हैं. I mean, now it's all about, you know, festivals का season शुरू होने वाला है. And we should talk about it. And मैंने तो इतना देखा है कि आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड कि आई थॉट लाइक यू नो व्हाई नॉट एटलीस्ट स्प्रेड एन अवेयरनेस कि इसके बारे में बात की जाए कि नॉट हियर टू लेक्चर एनीबॉडी अबाउट दिस. मगर आज 5 बंदे 10 बंदे भी अगर इससे कुछ सीख लें तो इट कुड टर्न अ मेजर थिंग इनटू अ बेटर थिंग और मे बी यू नो मे बी यू विल स्टॉप people when you see around something like this happening. तो थोड़ा सा गहरा टॉपिक है, थोड़ा सा you know this is a conversation and honestly I will request the studio and the Radio Naira folks to repeat this as much time as you can because I'm being very honest, brutally honest. मुझे बहुत लोगों ने कहा कि talk about this and I'm getting a lot of good feedback. I'm really surprised that a lot of people are also listening to this radio show क्योंकि यहाँ पे open conversations हो रही हैं. lot of चीज बहुत सारी चीज़ों की जो एक टैबू बना हुआ है हमारी कम्युनिटी में मगर उसके बारे में कोई बात नहीं करता. तो आई एम नॉट ट्राइंग टू थंप माय चेस्ट ऑन दिस बट यस दिस इज व्हाई आई एम ऑन द शो. आई एम स्पेंडिंग माय टाइम, आई डू एंजॉय म्यूजिक. तो अभी मैं भी थोड़ा थोड़ा गाने सुनना शुरू हुआ हूँ बट यस आई वांट टू टॉक अबाउट दिस टुडे. तो आज हम बात करेंगे सिविक सेंस इन आवर कम्युनिटी कि भाई क्या चल रहा है, क्यों इतनी हमारी कम्युनिटीज में रील्स वायरल्स हो रही हैं, क्या ये चल रहा है, कहाँ से ये हो रहा है. पहले भी था, मैंने कभी इतना नहीं देखा यहाँ पे. मुझे ऑलमोस्ट 20-22-25 साल होने आ रहे हैं बट यू नो लेटली दिस इज गॉन टू नेक्स्ट लेवल एंड लाइक यू नो लेट्स टॉक अबाउट इट. उसके पहले थोड़े गाने वाने सुनिए. आई विल राइट बैक आफ्टर द ब्रेक, देन विल स्टार्ट यू नो पीलिंग द ऑनियन वन बाय वन कि क्या है. इसके लिए तो मैं ऑलरेडी मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि आई कैन टॉक फॉर 2 hours नॉन स्टॉप ऑन दिस. I really don't even need to play any song because इतना कुछ मैंने देखा है और आपने भी देखा है. I'm pretty sure we all do not like it. मगर you know क्या करें, right? And क्या करें बोल के हम ये इसको बंद करके आँख मूंद के चले जाएं, that is also not a right thing about it. तो बोलना जरूरी है, बताना जरूरी है. And again, I will put full disclosure. This is not a target anybody. This is having an honest conversation. कि ये चीज़ें आपने भी देखी होंगी, महसूस की होंगी. और अगर आप if you're doing it unknowingly, then something there's everybody to learn from. इसके अंदर से कुछ सीखने की चीज़ है. तो प्लीज़ इसे नेगेटिव तरीके से नहीं लीजिएगा. आई एम जस्ट हियर टू वॉइस द कम्युनिटीज ओपिनियंस बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हैव टोल्ड मी टॉक अबाउट दिस. मैं बहुत हेजिटेंट था इसके बारे में बात करने के लिए यहाँ पर रेडियो पर बट वाई नॉट, जो होगा देखा जाएगा. तो चलिए गाना वाना सुनिए एंड देन विल बी राइट बैक.

तो जी हाँ दोस्तों, तीन गानों के बाद वी आर बैक। आई जस्ट वांटेड टू थोड़ा सा मूड लाइट कर दें क्योंकि आज थोड़ा टॉपिक हैवी है। आप सुन रहे हैं दिल से देसी शो विद मैन ऑन रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 101.9 FM and 1490 AM, or you can also call me today if you want to talk to me about something on the number 919-999-8595. The lines are open. Once again, 919-999-8595. So, today we are talking about civics and in our community. And what is all this right? So many hatred videos, why is this all happening? Like, something will happen, right? Where this is all boiling up. So, I want to talk about this. So, like, a small incident, right? Which ये बहुत ज़्यादा उछला था, आपको पता भी होगा। तो ऑलमोस्ट एक महीने पहले की बात है, कैलगरी कैनेडा की बात है, राइट? जहाँ पे वी आर इन लार्ज नंबर्स, यहाँ पे भी बहुत इवेंट्स हैं, बट आई जस्ट पिक वन, राइट? कैनेडा डे का सेलिब्रेशन था प्रेरी इवेंट्स पार्क में, जहाँ पे फ्री आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूशन इवेंट हो रहा था। बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव था, लाइक इट्स हैपनिंग फ्रॉम गुरु नानक किचन एंड अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी, दो कम्युनिटी साथ में मिलके, राइट? इट वॉज ऑल अबाउट यूनिटी, गुड मैसेज, हज़ारों लोग आए, राइट? बहुतों ने इनिशिएटिव को अप्रिशिएट किया, कम्युनिटी की सेवा थी, परफेक्ट एग्जांपल, राइट? लाइक हाउ यू वुड बी द बेस्ट वन आउट देयर टू पुट एन एग्जांपल के, लाइक चाहे जो भी है, वेर ऑल टुगेदर, व्हेन ह्यूमैनिटी प्रिवेल्स, वेर ऑल आउट देयर टू कम टुगेदर एंड हैव फन। लेकिन क्या वायरल हुआ उसमें से? इवेंट नहीं वायरल हुआ, वायरल क्या हुआ कि जो पार्क की हालत थी इवेंट के बाद में, और इवेंट चल रहा था उसी टाइम पे उसकी हालत थी, एंड आपने देखा होगा वो वीडियोज, अगर आपने देखी हैं कि जस्ट गो सर्च ऑन यूट्यूब और एनीवेयर यू विल फाइंड इट। पेपर प्लेट्स, आइसक्रीम्स, डिस्कार्डेड बॉक्सेस, कप्स, चम्मच, लाइक पूरे पार्क में फैला के रखी है, राइट? पूरा लेटर से भरा पड़ा है, एंड उसमें ही एक कैनेडियन वुमेन लाइक वेरोनिका लेस ने, उनका नाम है, उन्होंने एक वीडियो बनाया और कन्फ्रंट करना शुरू कर दिया उस इवेंट के बीच में ही, राइट? चलते हुए कि, और ये वीडियो ऑनलाइन चली गई, इट जस्ट टुक अ मिनट फॉर इट टू क्रैक एंड पूरा वायरल हो गया, राइट? तो आई मीन देर, इसमें दो तरीके के रिएक्शंस हैं अगर आप देखें तो। एक तो है कि कुछ लोग ने कहा कि ये वुमेन थोड़ी एंटाइटल्ड थी, क्लीन अप तो प्लान था आफ्टर इवेंट में, इतनी जल्दी जज करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन दूसरी तरफ से कम्युनिटी के अंदर से भी एक वॉइसेस है, राइट? और ये सभी सब इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक कमेंट था उसमें ही कि, और हम सोचते हैं कि हम दुनिया में सबसे, हमसे सब दुनिया में नफरत करते हैं। एक तरफ ये सब कमेंट्स थे कि भाई वी आर बीइंग टारगेटेड इन ऑल ऑफ दैट, और एक तरफ ये ऐसे कमेंट थे कि मैं शर्मिंदा हूँ इंडियन होने के नाते, राइट? लाइक व्हाई, ऐसी नौबती क्यों आ रही है, राइट? पहली बात तो इस वीडियो को देखिए, राइट? अगर आपने नहीं देखा होगा तो इट्स अ लेसन टू लर्न फ्रॉम दिस। ये रिएक्शन ही बताता है कि एक ये सिर्फ आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। कोई भी बंदा ऐसे उठ के ये वीडियो बनाने शुरू नहीं करेगा जब वो रिपीटेडली देखते हैं उनका घर खराब हो रहा है। हमें बहुत अच्छी आदत है कि हम घर में मार्बल लगा के, इवन इंडिया में भी, लाइक फर्स्ट क्लास एसी है, पंखा है, फलाना ढिंका, जो भी आप देख लीजिए, सब कुछ चकाचौंध है। अगर घर के बाहर आप स्टेप आउट करें तो गली के बाहर पूरा कूड़ा कचरा पड़ा हुआ, बिकॉज वी आर जस्ट लुकिंग आफ्टर आवर सेल्फ्स, वी आर नॉट लुकिंग एट द, ये हमारी जमीन है, हमारा घर है, हमारी कम्युनिटी है। दैट सेंस ऑफ कम्युनिटी इज मिसिंग, राइट? हम चाहे जितने भी ग्रुप्स बना लें, लाइक आई वॉन्ट नेम, बट देर tons of associations here, but अंदर से सभी जगह पे कुछ ना कुछ चल रहा है और बाहर भी वो रिफ्लेक्ट होके आ जाता है। तो दिस इज समथिंग वी नीड टू टॉक अबाउट, राइट? ये सिर्फ कैलगरी की बात नहीं है, ये फ्रिस्को में जाइए, टेक्सस में जाइए, एडिसन में जाइए, जर्जी में जाइए, अपने ट्राइंगल में देखिए। इवेंट्स के बाद आप हाल देखिए क्या होता है उस ग्राउंड्स का, वहाँ पे क्या हम छोड़ के जाते हैं पीछे। होली ले लीजिए, दिवाली ले लीजिए, दशहरा ले लीजिए, राइट? लाइक कोई टेंपल का फंक्शन ले लीजिए, कोई कल्चरल फेयर देख लीजिए, जब इवेंट ख़त्म होता है तो उस ग्राउंड की हालत देखिए क्या हम करके जाते हैं और कौन करके जा रहा है। कोई बाहर से तो नहीं आ रहा करने के लिए, हम ही कर रहे हैं इन चीज़ों को, राइट? तो सवाल ये नहीं है कि ये सिर्फ कैनेडा में हुआ, सवाल ये है कि हम खुद अपने आप से क्या देख रहे हैं, क्या, व्हाट डू वी एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस, लाइक। और फिर हम
कि जब हमारी जब वीडियो में बनती हैं और ये चीज़ें बाहर आती हैं तो हाउ डू यू रिफ्लेक्ट योर सेल्फ, लाइक ये कम्युनिटी किस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर आती है, राइट? तो दिस इज व्हाट आई वांट टॉक अबाउट. आई मीन मैं एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ कि लास्ट ईयर ही यहाँ की ही हमारे टाउन की बात है, क्रिकेट ग्राउंड की, आपने देखा होगा कि हम दिवाली तो हम सब जोश से मनाते हैं, विच इज़ वेरी गुड, वी शुड डू इट, राइट? नथिंग रॉन्ग विद इट. मगर जिस तरीके से हमने किया वो सब कुछ के यू नो, एक क्रिकेट फील्ड पे किसी एक ने फटाके चलाए तो पूरी कम्युनिटी आ गई और पूरा क्रिकेट ग्राउंड डैमेज कर दिया और इतने फटाकों के बॉक्स और ये सब छोड़ के चले गए हम पीछे. लाइक व्हाट डिड वी पुट आउट एज अ कम्युनिटी, हमने क्या किया? लाइक इसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन तक बात पहुंची, सब कुछ हुआ, बट इट इज़ नॉट राइट व्हाट वी डिड, राइट? और इसके बारे में बात करना जरूरी है बिकॉज वो बात गई वाली बात में तो ये साल फिर होगा, वही काम होगा, या तो पुलिस वहाँ पे वो प्रोटेक्शन डालेगी. और बहुत से लोगों ने ये भी बोला कि ओके पुलिस कहाँ थी, राइट? उस टाइम पे वहाँ पे ही 2 माइल दूर पुलिस स्टेशन है, वो क्यों नहीं आई? आई मीन डू यू, आप क्राइम होने के देखते रहेंगे और फिर बोलेंगे अरे पुलिस कहाँ थी, राइट? अगर आपको दिख रहा है तो यू कैन स्टॉप इट. ये यहाँ पे हुआ है, वॉज अ बिग हाईलाइट. रिफ्लेक्ट कौन हुए, दिवाली कौन मनाते हैं, हम मनाते हैं, कोई दूसरी कम्युनिटी तो आके नहीं मनाती. और हमने पूरा एक आपके ही पैसे से जो पार्क बनाया उसको डैमेज और डिस्ट्रॉय कर दिया, जहाँ पे क्रिकेट फील्ड, वी हैव अ प्रिविलेज के यहाँ पे क्रिकेट फील्ड बनाई है और हमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, राइट? फटाके फोड़िए, जो करना है करिए. और वो वहाँ पे ऐसे भी फटाके फोड़े गए जो स्टेट से अप्रूव्ड ही नहीं है, जो रॉकेट्स चले, सब कुछ चला. आपको पता होगा कि एवरी ईयर यहाँ पे एक इंसिडेंट होता है दिवाली में, लाइक एक या दो जो अनफॉर्चुनेट फैमिली के घर चल जाते हैं. इतना बोलने के बाद में, इतनी वार्निंग्स करने के बाद में भी ये चीज़ होती है, राइट? सो आई डोंट नो लाइक क्या किया जाए इसके बारे में, बट एटलीस्ट यू नीड टू टॉक अबाउट दिस कि ऐसे क्यों हो रहा है, व्हाट इज़ द इशू हैपनिंग हियर, कि ओपनली पब्लिक प्लेसेस में आके, लाइक आई टेल यू एग्जांपल, होली में, राइट? इट टेक्स अस 3 to 4 hours जस्ट टू क्लीन, लाइक उसके बाद में 4 घंटे लगते हैं, 5 घंटे, और जो कचरा होता है, जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं, इट्स अनबिलीवेबल. ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, राइट? देर आर सो मैनी इवेंट्स लाइक दैट के भाई वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट यू नो कीपिंग द प्लेस क्लीन. लाइक हमारे मंदिर को ही हम क्लीन नहीं रख सकते, वहाँ पर भी हम खाना फेंक के चले जाते हैं, कचरा फेंक के चले जाते हैं, बिकॉज यू नो कोई ना कोई आके साफ करेगा ना, क्लीनर लगा है, राइट? कोई ना, बट यू आर पेइंग, समबडी इज पेइंग टू क्लीन दैट. तो प्लीज़ सोचिए इसके बारे में, लाइक ये क्यों हुआ, राइट? ये क्यों इंसिडेंट हाईलाइट हुआ? एक किसी का पार्क है, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. पार्क्स भी यहाँ पे लोग जो लैंड होती है वो स्टेट्स को डोनेट करते हैं किसी की मेमोरी में, मैंने बहुत सारे देखे हैं. हम आइसक्रीम के तो मज़े ले रहे हैं मगर पार्क की पूरी यू नो बैंड बजा के छोड़ दिया वहाँ पे, और बाद में फिर हम डिपेंड कर रहे हैं अरे क्लीनर आके क्लीन करेगा. लाइक व्हाई डू यू नीड अ क्लीनर टू क्लीन दिस व्हेन यू कैन क्लीन इट बाय योरसेल्फ. और यही चीज़ आपके बच्चों के साथ में भी आप वहाँ पे कर रहे हैं तो वो भी यही करेंगे आगे जाके. तो यू नो जस्ट समथिंग टू थिंक अबाउट कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है. लाइक पहले भी होता होगा आई एम प्रीटी श्योर, पर अभी ये सोशल मीडिया का ज़माना है, 1 मिनट लगता है किसी को वीडियो बना के इंटरनेट पे डालने के लिए, एंड यूर देयर यू गो, यू आर वायरल नाउ, राइट? कितने ही इंसिडेंट हैं, लाइक मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ 2 घंटे तो इसमें बात करना भी कम है. इस ये नौबत आ चुकी है कि यू नो कि 2 hours इज़ वेरी लेस फॉर दिस. आई कैन, इफ आई ब्रिंग द टॉपिक्स आउट, पूरा दिन मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, इसके ऊपर बात कर सकता हूँ, मगर आई एम जस्ट पिकिंग 1 or 2 के भाई जो लोगों के दिमाग में अभी लेटेस्ट रहे, राइट? कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. एंड दे वर फाइंड फॉर ऑल ऑफ दिस, एंड बाद में उतनी ही रिस्ट्रिक्शंस होती हैं क्योंकि हम लोग जो हाल छोड़ के जाते हैं पब्लिक पार्क का, जो गंदगी फेंक के जाते हैं, दैट इज़ बैड, दैट इज़ नॉट गुड. और अगर आपने देखा भी होगा कि जो दूसरी जो यू नो हाई बाली और ये सब जो जगह में आजकल आप वहाँ पे भी वीडियोस देख रहे हैं, लाइक लोग बना के छोड़ रहे हैं कि देखो ये फैमिली आई, इन्होंने यहाँ पे चादर बिठा के खाना खाया और सब यहाँ फेंक के चले गए. लाइक व्हाट इज़ दिस, लाइक इट इज़ समथिंग रियली टू रिफ्लेक्ट एंड थिंक अबाउट. कि आप ये मत सोचिए कि आप करके जो जा रहे हैं उसको आप देख नहीं रहे हैं, ये पूरी दुनिया आज के टाइम पे कैमरे से कवर्ड है. सो इट जस्ट टेक 2 minutes for someone to pull a phone out and make a video and there you go. पूरी कम्युनिटी बदनाम होती है.
चीज की वजह से. तो यू नो थिंक अबाउट इट. और भी है, यू नो वी विल कंटिन्यू टॉकिंग अबाउट दिस, बट आई जस्ट वांटेड टू स्टार्ट द शो विद समथिंग लेटेस्ट कि अभी क्या हुआ. राइट, पूरा पार्क आपने देखा होगा वीडियो के. आइसक्रीम तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, कितनी अच्छी बात है कि लाइक दो कम्युनिटी साथ में आई हैं एंड दे आर सर्विंग आइसक्रीम्स एंड एवरीथिंग. और पूरा पार्क हमने खराब करके रखा है. एंड देन द जस्टिफिकेशन वी हैव अबाउट दिस इज कि भाई इवेंट के बाद में हम साफ कर लेंगे. ऑफकोर्स कर लेंगे, उसको तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर आपने नहीं किया तो यू हैव बी फाइन एंड पेनल्टीज फॉर दैट. बट हमने जिस तरीके से उसको सेलिब्रेट किया और इन्जॉय किया, वो कैसे उठ के आया, जो आना चाहिए था वो नहीं आया और जो नहीं आना चाहिए था वो सामने आ गया. वाई? बिकॉज it's not the event organizer's issue, it's not their fault, because wo to itna acha organize kar rahe hain. Event karna is not a joke, it takes a lot of preparations and everything, din raat lagna padta hai. Magar when you cannot control the public at that point, jab wahan pe 1500 bande ho, it is very difficult to stop everybody from doing something. So that is why, you know, it is each and everybody's responsibility ke agar aap ghar ke bahar hain to like, you know, keep a trash bag or do something, like, you know, kachra mat phailaiye sab jagah pe, because it comes pretty easily highlighted. Or especially jo public parks hain aur ye sab cheeze hain, these are all community assets. Isme sirf aap hi entitled nahi hain, yahan pe jo log rehte hain saalon se, sadiyon se, jo unki ye land hai, उन्हें हम खराब कर रहे हैं और अपने खुद की चीज़ों को खराब कर रहे हैं. याद करिए, वो जाइए मॉरिसविल के डालिए और देखिए कि लास्ट ईयर दिवाली में मॉरिसविल पार्क का क्या हालत थी. और हमारी ही कम्युनिटी उसको व्हाट्सएप ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर रही थी इतना ज़्यादा, बिकॉज इट वॉज सो अनोइंग टू सी ऑल ऑफ दिस. इतना दूर नहीं है, 6-7 महीने पहले की बात होगी, 8 महीने होंगे दिवाली को भी, और देखिए क्या हाल हुआ था. तो दैट्स व्हाई, यू नो, आई वांट टू टॉक अबाउट दिस. तो चलिए गाने वाने सुनिए एंड वी विल बी राइट बैक.

तो जी हाँ दोस्तों, वी आर बैक ऑन दिल से देसी विथ लाइव शो विथ मैन। यू आर लिस्निंग टू रेडियो नायरा एंड यू कैन ट्यून इन ऑन 99.9 एफएम एचडी 4, 101.9 एफएम 1419 एएम। मैं हूँ आपका होस्ट मैन। आप फोन भी कर सकते हैं इफ यू वांट टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक, एंड यू कैन कॉल मी एट 919-999-8595। तो चलिए हम बात कर रहे हैं राइट सिविक सेंस की। तो ये ऐसे टॉपिक है जिसमें बात करनी पड़ रही है आज, तो विच इज ऑल्सो अबाउट इट। तो अभी नेक्स्ट आई वांट टू टॉक अबाउट इज लाइक यू नो क्यू में खड़े होने का आर्ट, राइट? ये भी एक आर्ट है क्यू में खड़े होने का, बिकॉज मैंने बहुत देखा है कि ऐसी चीज़ें जो शायद रिलेटेबल होगी बहुत लोगों से, कि लाइन में खड़े होना, ये टेंपल की आरती का वक्त हो, फूड में कोई इवेंट का काउंटर पे खड़ा रहना हो, एयरपोर्ट में हो, कोई भी पब्लिक प्लेस पे हो, कोई इवेंट्स पे हो, लाइन एक ऐसी चीज़ है जो हमारी कम्युनिटी के साथ बहुत कम्फर्टेबल नहीं हो पाती कभी भी, क्योंकि वी आर नॉट कम्फर्टेबल विथ फॉर्मिंग अ लाइन। जो भी हो जाए सब घुस जाओ सीधा अंदर, देखा जाएगा जो भी होगा। तो इतने लोगों ने ये देखा है, लाइन लंबी है और कोई बस एक मिनट में आए और बोले कि साइड से घुस जाते हैं या फिर अरे हम तो सिर्फ पूछने के लिए आए हैं, या अरे आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माय किड टू कम बैक बोल के बिल्कुल आगे तक चले जाएंगे। और या एक ग्रुप का बंदा एक लाइन में खड़ा होगा और पीछे से 20 लोग उस लाइन को ज्वाइन करेंगे, राइट? देन यू क्यू, यू ब्रेक आउट लाइन। तो 20 लोगों को खड़ा नहीं होना, उसकी वजह से एक बंदा खड़ा हो गया और देन अनदर 20 पीपल ज्वाइन द लाइन, राइट? ज्वाइन कर लेते हैं। ये छोटी चीज़ लगती है, राइट? एक बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज छुपा है, राइट? कि मेरा टाइम आपके टाइम से ज़्यादा ज़्यादा है। कल रात की बात है, मैं आपको बताऊँगा कि थोड़ा सा इवेंट में लेट हो गया था, एंड देन इवन सीनियर्स वर स्टैंडिंग ऑन द लाइन एट 11:30 और कोई थोड़े थे देखिए, मैंने सवेरे काम पे जाना है हमको तो हम सीनियर की लाइन में घुस गए, एंड देन दो 70-80 ईयर्स ओल्ड आर स्टैंडिंग इन लाइन फॉर फूड एंड देर फॉर्मिंग लाइन, और वहाँ पे यंग कपल आके घुस गए कि अरे भाई हमको काम पे जाना है सवेरे, हम ऑनलाइन और नहीं रुक सकते ये वो, एंड देन दैट टाइम देयर वाज अ क्लैश बिटवीन टू पार्टीज के आप क्या बोल रहे हैं कि हम बेवकूफ़ हैं यहाँ खड़े, क्या हो रहा है, राइट? और कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे अभी हमने भगवत कथा सुनी है। तो इट इज़ समथिंग टू रिलेट, राइट? कि हमने क्या सीखा, राइट? उसमें 4 घंटे बैठ के भजन करके जब ये दोनों लोग की

ये दोनों लोग तक सीमित नहीं था ये, राइट। ये एक पैटर्न बन जाता है एक पूरे ग्रुप का, तब दूसरी कम्युनिटीज इसको नोटिस करती हैं, ये तो चलो हमारे अंदर चल रहा है, मगर जब बाहर भी ये होता है तो अदर पीपल ऑल्सो नोटिस कि यार ये लोग ऐसे ही हैं, राइट। और इसका एक स्टीरियोटाइप बनता है। एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि लाइक ये सिर्फ यहाँ पे ही नहीं है, राइट, अमेरिका में की बात नहीं है कि यहीं पे हो रहा है, इंडिया में भी यही डिस्कशन चल रहे हैं। लाइक रेलवे स्टेशन में चले जाइए, एयरपोर्ट्स पे चले जाइए, मंदिरों में चले जाइए, गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाइए, लाइन ब्रेकिंग तो एक नेशनल कॉन्वर्सेशन बन चुका है, राइट, इंडिया में भी, कि न्यूज़ चैनल सोशल मीडिया इसके ऊपर कॉन्टेंट बना रहे हैं आज के टाइम पर। अगर आप देखे जाके तो न्यूज़ का चैनल का ये काम ही नहीं है, मगर यही चल रहा है। रॉन्ग साइड गाड़ी चलाना, आप देखिए यूट्यूब में जाके और फेसबुक में जाके कितने रील्स और वीडियोस बन रहे हैं जो लोग खड़े हो जाते हैं और लोगों को उल्टा घुमा के भेज रहे हैं कि अब जाओ आप रॉन्ग टर्न आए हो, रॉन्ग साइड पे आए हो, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी ज़्यादा ज़रूरी है। वो जो 500,000 बंदे राइट साइड जो राइट लेन से जा रहे हैं ट्रैफिक में फंसे हैं, दे डोंट मैटर एनी मोर। तो ये लाइक दिस इज़ अ बिग, एक ये मैं तो इसको एक ना मेंटल डिजीज कहूँगा कि ये क्या कर रहे हैं, राइट, के सिविक सेंस की इशू सिर्फ यहाँ ही नहीं है, ये हम वहाँ से लेके आ रहे हैं, दिस हाउ आई फील लाइक। तो थोड़े से यू नो ये सिर्फ जियोग्राफी तक की बात नहीं है, ये एक हैबिट की बात है जो हमारे साथ हम लेके आते हैं, हमारे साथ जिंदगी भर चलाते हैं कि भाई अरे चल रहा है ना, कुछ नहीं, इसको कौन बोल दे क्या कर लेने वाला है, ये कौन पूछ लेने वाला है। कई लोग मुँह ही नहीं लगना चाहते, वो चुप हो जाते हैं, यार भाई जाओ आपको जाना है तो आप चले जाओ आगे, यू नो, बट दिस इज़ रॉन्ग। अंदर हो रहा है तो ठीक है, मगर बाहर दूसरी जगह में हो रहा है, इट्स नॉट राइट व्हाट वी आर डूइंग। तो मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ कि अगली बार अगर आप किसी लाइन में खड़े हैं, राइट, और दिल करता है कि चलो तोड़ के निकल जाओ, लाइक एक सेकंड के लिए रुकिए और सोचिए, लाइक यू थिंक अबाउट इट, कि अगर मेरे पीछे खड़ा हुआ बंदा ऐसा करता मेरे सामने तो वो तो मुझे कैसा लगता, या तो अगर मैं ये कर रहा हूं तो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। जस्ट थिंक अबाउट इट कि यू नो हाउ डज इट पोर्ट्रे के एक लाइन में लेके खड़े हैं, बच्चों को पकड़ के खड़े हैं और आप लाइन तोड़ के जा रहे हैं, ये क्या है, राइट, लाइक इज दिस व्हाट वी नीड टू इवन टॉक अबाउट। इतनी एजुकेटेड कम्युनिटी है हमारी, आई मीन आई एम प्रीटी श्योर हम जो भी यहाँ पे आए हैं उनका एक गुड एजुकेशन बैकग्राउंड है, एक अच्छा यू नो क्वालिफाइड है, राइट। हम मैं बहुत लोगों को अपने दोस्तों को भी बोलता हूँ कि डिग्रीज और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हम अनपढ़ो, या बोलते ना कि भाई जिनको बिल्कुल भी कोई दुनिया के बारे में पता नहीं, हम वैसे अपने आप को ट्रीट कर रहे हैं और पोर्ट्रे कर रहे हैं बाहर। तो प्लीज़ यू नो दिस इज़ समथिंग वी नीड टू बी ऑल अवेयर ऑफ, कि भाई दो मिनट रुकिए, सब्र रखिए, राइट, बिकॉज आपको भी मिल जाएगा जो आप जिसके लिए खड़े हो लाइन में, बट you want to push somebody, you want to get ahead of things, what are you portraying, what are you going to get out of it, at the end of the day kya aapne roti aur prasad dena hai, like you know what's the point of having those things when we cannot wait for a few minutes for it, aur aisa bhi nahi ki bhai you know khane ka akal hai, right, you can always go home cook whatever it is, but ye karna what does it what ye kya shobha de raha hai, right, kya aap bata rahe hain bachcho ko, aur wo bacche bhi saath mein khade ho bhi dekh rahe hain chalo bhai line tod ke chale jao aage, it's a wrong thing. So, सोचिए इसके बारे में। गाने वाने सुनिए। We'll be right back.

तो जी हाँ दोस्तों, वी आर ऑलमोस्ट कमिंग अप फिनिशिंग क्लोज टू एन आवर। अभी तो बहुत सारी चीज़ें मुझे कवर करनी है, बट टाइम घड़ी चलती जा रही है, सो आई एम गोना कीप कवरिंग दिस टॉपिक। आज हम बात करें सिविक सेंस पे, ये बहुत ही हार्ड टॉपिक है। आई मीन मैं तो हेजिटेंट था इसके बारे में बात करने, मुझे बहुत लोगों ने कहा कि यू शुड हाईलाइट दिस, सो दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट इट टुडे। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा विद दिल से, ऑन अ दिल से देसी शो। मैं हूँ आपका होस्ट वैन। यू कैन ट्यून इन 99.9 एफएम एचडी 4, 101.9 एफएम 1490 AM, or you can also call me at 919-999-8595. So, aaj, chale continue karte hain. Next one I want to highlight, right? Trash, you know, kachra fekna. Aur iski tehzeeb mein kaise nagam lagai jaye, right? Temples mein, especially like ye temples ho gaye, community, you know, spaces ho gaye. Yahan pe kaise hum हालत ख़राब करते हैं इन चीज़ों की। तो जो हमारी कम्युनिटी इसके लिए सबसे ज़्यादा, यू नो, टेंपल्स और ये सब जगह बहुत हमारे लिए सेक्रेड है, लेकिन सिविक सेंस वहीं पे सबसे ज़्यादा टच होती है आपकी, बिकॉज आप वहीं पे होते हो बहुत ऑल द इवेंट्स, राइट? हम पहले वहीं जाते हैं, तो लाइक यू नो, व्हेन यू गो एंड लुक एट द प्लेस व्हेन द फूड स्टार्ट्स बिफोर आफ्टर, प्रसाद के पैकेट्स आर ऑन द फ्लोर, प्लेट्स, यू नो, एक प्लेट की जगह तीन प्लेट, यू नो, जरूरत ही नहीं है, राइट? पर फिर भी, यू नो, इट्स लाइक, यू नो, समटाइम्स मुझे अब बोलने नहीं चाहिए ये वर्ड, बट आई फील लाइक ये आँखों की भूख है, राइट? ये पेट और बॉडी की नहीं है, दिस जस्ट लाइक मुझे मिल जाए ज़्यादा, बस दैट्स प्रीटी मच व्हाट आवर मेंटालिटी हैज़ गॉन स्टक ऑन टू। जहाँ पे भी फेंका हुआ है, चप्पल सब जगह पे फेंकी हैं, शूज़, फुटवेयर कहीं पे भी फेंके हुए हैं, उसकी जगह है, पर नहीं, यू नो, कौन जाएगा यार, चार स्टेप्स दूर यहीं पे छोड़ के चले जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं तो मंदिर देखा जाएगा, राइट? इट डजेंट मैटर, राइट? दूसरी जगह, यू नो, एक कोई बंदा किसी और के शूज़ पहन के चले जाता है, बिकॉज यू नो दे डोंट वांट टू फाइंड देयर ओन। आई हैव सीन दैट, ट्रस्ट मी, दिस इज लाइक मे बी, यू नो, सरप्राइजिंग टू यू, बट इट हैपेंस, लाइक छोटी छोटी बात लगती है, बट ये फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करती है। गो लुक एट रेस्ट रूम्स का हाल देखिए क्या होता है, राइट? के दो तीन घंटे इवेंट के बाद में आप देखिए कि लेकिन वहाँ पे हम क्या तांडव मचाते हैं, लाइक ये सब चीज़ें जो हैं, ये टेंपल की कम्युनिटीज़ जो होती हैं, इनके वॉलंटियर्स होते हैं, ये अपना टाइम, अपना पैसा, अपनी मेहनत, सब कुछ अपना देते हैं, वहाँ पे काम करते हैं। यू नो, मैं खुद, यू नो, आई मीन इन्वॉल्व इन दिस थिंग्स इन मल्टीपल प्लेसेस एंड मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस, पर एक कॉमन कंप्लेन है, राइट? कि हमेशा आती है कि लोग आते हैं, अपना काम करते हैं, यू नो, भक्ति करेंगे, प्रसाद खाएंगे, चल जाएंगे, बिना सोचे समझे कि इसके बाद इसकी साफ सफाई कौन करेगा। You know, I can tell you n number of, you know, experiences about this. के बोलने को कई बार माइक पकड़ के शर्म आ जाती है कि यार ये बोलना पड़ रहा है, और सीनियर्स को, और देर वेल सेटल, सब कुछ है, मगर पानी की बॉटल जो हम वेस्ट करते हैं, दो घूट पिया, फेंक दिया वहाँ पे, फिर वहीं पे फेंक दिया, ये नहीं कि साथ में लेके गए क्या, उसको रिफिल कर दिया। इट इज रियली बैड, लाइक ये वेरी, इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी दिस, के भगवान की जगह पे जहाँ पे आप भक्ति कर रहे हैं वहाँ पे आप ये काम करके जा रहे हैं, राइट? लाइक संडे की लाइक शाम को कोई इवेंट होता है, राइट? आप यू लुक एट इट, लाइक इवेंट हुआ, आरती हुई, खाना हुआ, प्रसाद हुआ, खत्म, लेट्स गेट इन द कार एंड गेट आउट, राइट? उसके बाद में बेचारे वो कुर्सियाँ उठाते हैं, वो झाड़ू लगाते हैं, वो किचन साफ करते हैं, पहले आपको खिलाते हैं, अपना टाइम देते हैं। दीज आर नन ऑफ दीज आर पेड जॉब्स फॉर एनीवन हु इज कमिंग एंड हेल्पिंग आउट, बिकॉज दीज आर लाइक नॉन प्रॉफिट्स। एवरी डॉलर, एवरी मनी इज योर मनी, आपकी खुद की एक जगह है, आपका खुद का एक वो स्थल है, जो हम यूज करते हैं, तीर्थ स्थल कहते हैं हम, राइट? और हम फिर उसी में जाके घन मचाते हैं। गो लुक एट द वीडियोज ऑन लाइक कभी ये मानसरोवर और यहाँ पे जा रहे हैं, हम श्रद्धा से जाते हैं, मगर देखिए वहाँ पे क्या कूड़ा फेंक के आते हैं हम, राइट? गो सी व्हाट डू वी डू एट द टेंपल्स एंड क्या रिसाइकलिंग का हिसाब किताब है, कुछ नहीं, राइट? तो इट इज़ वेरी हार्ड ब्रेकिंग। आई मीन मैं छोटी सी बात बताता हूँ, एक भगवत कथा चल रही है वहाँ पे, एंड आई सी, मैं हर रात को वहाँ पे कम से कम 200 बॉटल, नहीं ना तो 200 तो मैं बहुत कम नंबर बता रहा हूँ, ऐसे फेंकी हुई पड़ी होती है फ्लोर के ऊपर, पी हुई भी खाली बॉटल फेंक दी है, बल्कि वहाँ ट्रैश कैंस बाजू में पड़े हैं, बट नहीं, लाइक यू नो, वी जस्ट फील लाइक अरे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई आके कर देगा साफ, दिस इज़ नॉट माई जॉब टू डू, राइट? एंड दिस इज़ रॉन्ग।
लाइक आप अपने घर के रेस्टरूम्स देखिए आप कैसे रखते हैं. व्हेन आई हैव बीन टू लॉट ऑफ पीपल्स हाउस और किचन देखो ऐसा चकाचक चकाचौंध होता है राइट. लाइक एंड लुक एट व्हाट वी डू हियर लाइक फ्लोर्स पे खाना कारपेट्स पे खाना. क्लीनिंग अ कारपेट कॉस्ट अबाउट $1,000 एंड इट इज़ योर एसेट इट्स अ कम्युनिटी एसेट मगर हम देखिए उसकी क्या हालत करके जाते हैं. Like again, these are the things. I don't want to say this on a radio show. I was very hesitant about this, but ये होता है. Like सालों हो गए मैं देख रहा हूँ, and you know, at least इसमें से थोड़े लोग कुछ सीख जाएँ, या किसी को करते हुए रोकें. That is the most important part. That is why I'm talking about all of this. के बहुत बहुत दुख होता है ये सब चीज़ें देख के कि भाई एक टीम लगती है पूरी जो काम करती है राउंड द क्लॉक हज़ारों लोगों के इवेंट्स को मैनेज करने में और बाद में जो इन चीज़ों को संभालना पड़ता है दैट इज़ द मोस्ट यू नो टायरिंग थिंग बिकॉज जो असली काम शुरू होता है वो इवेंट के बाद शुरू होता है पहले नहीं होता राइट. वो इवेंट के पहले का तो जोश अलग होता है बट बाद में लोग थके होते हैं और उन्हीं वॉलंटियरों को एक्स्ट्रा रात बैठना पड़ता है दो दो तीन तीन बजे तक उसको साफ़ करके ताकि अगले दिन आप आएँ तो आपको वो जगह साफ़ मिले अगर या तो कोई दूसरे बंदे को मिले तो साफ मिले. Numerous incidents, like मैं बता सकता हूँ, like I saw last year, I had to literally go on a stage and say कि ये भगवान का घर है और आपने देखिए क्या किया है राइट. एंड देन एवरीबडी फेल्ट अशेम्ड एंड दे वॉक्ड अप एंड दे स्टूड अप एंड स्टार्टेड क्लीनिंग. आपके अगर बच्चे हो वहाँ पे राइट तो पुट देम ऑन सम वॉलंटियरिंग वर्क. उन्होंने कही बच्चा कहीं आपको कुछ कचरा मिलता है तो उठा के ट्रैश में डाल दीजिए. इट्स ओके आई अंडरस्टैंड सीनियर्स होते हैं लाइक इट्स नॉट ईजी फॉर देम टू गेट अप एंड डू थिंग्स समझते हैं चीज़ों को मगर फिर भी यू नो जितनी इज्जत हम अपने भगवान को देते हैं उतनी इज्जत हम उस जगह को भी मिलनी चाहिए बिकॉज वहीं पे भगवान बैठे हैं वहीं पे उनकी पूजा हो रही है. जूते चप्पल हम अंदर लेके चले जाते हैं मुझे कौन पूछेगा मेरे को सब जानते हैं यहाँ पे राइट. ये और कई बार तो बोल देते हैं तो उन लोगों को होता है कि तुम कौन हो तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले राइट. ये लड़ाई झगड़े पर बात आ जाती है तो एट दैट पॉइंट यू जस्ट हैव टू लेट इट गो राइट. कितनी बार पानी में फ्लोर पे पानी डाल देते हैं डोंट इवन फील लाइक यू नो क्लीन इट बिकॉज क्या पता है? और ऐसे ही लाइक कोई अगला बंदा स्लिप हो जाए कुछ हो जाए. डोर्स खोले रख देना बाथरूम्स के किचन्स के ये सब बिकॉज एसी चल रहा है राइट. कोई ना कोई तो बिल पे कर रहा है क्या फ़र्क पड़ता है. दिस इज़ द बिगेस्ट पेट पीव आई हैव बिकॉज आई सीन इट. रोज लगी हैं बैठने के लिए मगर बाजू में पर्स रख दो और आप बैठ जाइए मगर किसी को बैठने मत दीजिए बाजू में. अगला बंदा बेचारा खड़ा है क्या क्या कर रहे हैं हम राइट एज ए सोसाइटी राइट. हम आए हैं एक अच्छी चीज़ के लिए एक अच्छे इवेंट के लिए एक त्यौहार मनाने के लिए बट वी वॉन्ट अवर ओन स्पेस एंड अवर ओन एंटाइटलमेंट. वी डू नॉट वॉन्ट गिव स्पेस टू समबड़ी के कोई एक बुजुर्ग बाजू में आके बैठ सके क्योंकि नहीं हमें दो कुर्सी चाहिए एक की जगह में. विच इज़ रियली सैड. आप देखिए आपने भी देखा होगा ये होता है. तो यू नो थिंक अबाउट इट राइट के इफ़ यू सी समथिंग स्टॉप इट पिक अप वेक अप बिकॉज हम हमारे अंदर कम्युनिटीज में ये कर रहे हैं तो हम बाहर जाके भी यही करेंगे और फिर ऑब्वियसली इनकी वीडियोज़ बनेंगी ये वायरल होंगी. नथिंग रॉन्ग अबाउट इट क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी फिर वही होगा. यू मैट हैव सीन आजकल होटल्स में अभी नवे आ गए हैं कि यू नो देर वी आर पर्टिकुलरली टारगेटिंग इंडियन डायस्पोरा. Why? Because they are seeing this over and over and they're fed up of it. So not everybody does it again. I'm again being very cautious about what I'm saying here. But phir bhi, ye cheeze hoti hain. And then we need to stop this. There is nothing wrong to accept the mistake and identify the mistake. Agar aapko apni problem pata hai, toh 50% problem wahin pe solve ho jati hai because you know what needs to be fixed. And that is the most important part. Toh chaliye gaana wana suniye, I'll be right back.

क्या बात है, अरिजीत रॉक्स ऑल द टाइम। आई होप यू आर एंजॉइंग द म्यूजिक। वी आर ऑन दिल से देसी शो लाइव विद वैन। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम, एचडी 4 101.9 एफएम और 1490 एएम। यू कैन आल्सो कॉल मी एट 919-999-8595। तो चलिए बात करते हैं दूसरी एक चीज की, एक राइट, फायर लेन्स, पार्किंग। मेरी गाड़ी कहीं भी हो, आई कैन जस्ट पार्क एनीवेयर आई वांट। बहुत हेडेक है ये एक चीज़ की। और इतनी बार हम लोगों ने, वेन एवर आई वॉज इन्वॉल्व इन सम थिंग्स, के भाई डांट सुनी है फायर मार्शल्स के, और वो बेचारे फिर भी दे आर नाइस इनफ एंड यू नो दे गिव अस अ पास, बट यू नो दिस इज़ वेरी सीरियस स्टफ। और मैंने इंसिडेंट्स भी देखे हैं, चाहे कोई भी पार्किंग की कन्वर्सेशन हो, किसी बड़ा कोई इवेंट हो, आई वोंट नेम द इवेंट, राइट, नवरात्रि, गरबा, दिवाली, व्हाटएवर इट इज, राइट, ये कोई भी बड़ा फंक्शन हो और पार्किंग लॉट देखिए क्या हाल होता है वहाँ पे, राइट। फायर लेन में गाड़ी खड़ी है, हैंडीकैप स्पॉट में विदाउट परमिट घुसा दो, दो गाड़ियों के बीच में लगा दो, या ऐसे पार्किंग लगा दो कि दो पार्किंग के स्पॉट ले लो। कल ही मैंने देखा एक, लाइक ना देयर इज नो स्पेस लेफ्ट, बट इग्नोरेंस ऑफ पार्किंग के भाई गलत लगाई है, एंड आई सॉ द पर्सन पार्किंग रॉन्ग एंड देन ही इवन लेफ्ट विद इट। तो एक गाड़ी वहाँ खड़ी हो सकती थी मगर नहीं खड़ी की वापस वहाँ पे, राइट, दैट्स व्हाट गलत चीज़ है। तो ये सिर्फ इनकन्वीनियंस की बात नहीं है, ये सिर्फ सेफ्टी भी है भाई, बिकॉज फायर लेन इसीलिए बनाई जाती है। ये सब चीज़ों के कोड्स होते हैं कि भाई एक फायर ट्रक को निकलना, उससे वो हाइड्रेंट से पानी निकालना, लेके आना, पहुँचाना, इट्स दिस इज़ ऑल एम्बुलेंस को निकल पाना, दीज आर ऑल इम्पोर्टेंट थिंग्स। चाहे मे बी वी माई नॉट हैव फेथ बैक होम कि भाई ये एम्बुलेंस आएगी कि नहीं टाइम पे, फायर ब्रिगेड का कोई सिस्टम है कि नहीं, राइट, मगर यहाँ पे है, सभी कुछ लक्कड़ से बनाए हैं, राइट, इट कुड ईजिली कैच थिंग्स। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, जब हम अपनी गाड़ियाँ वहाँ खड़ी कर देते हैं तो सिर्फ दो मिनट के लिए आप, हम तो कन्वीनियंस मिल गया, मगर आप लोगों की ज़िंदगी से खेल रहे हैं, आप पूरी इवेंट से गैम्बल कर रहे हैं, और अगर कुछ गलत हो जाए तो इट्स ऑल डन, इट्स द एंड ऑफ द स्टोरी, आप जो इवेंट में जा रहे हैं वो इवेंट ही बंद हो जाएगा। आई मीन परसों, दो थोड़े दिन पहले की बात है, देयर वाज अ फायर अलार्म सिस्टम मैल फंक्शन हुआ था एंड देयर आर लाइक हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल इनसाइड। लकीली कार्स खड़ी थी, बट द फायर मार्शल्स वर गुड इनफ, अदरवाइज दे गिव यू द वार्निंग, दे डू नॉट टेक दीज थिंग्स लाइटली। और जो इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, जो मैनेज करते हैं, जो आप कुछ भी करते हैं, दीज थिंग्स आर टेकन वेरी सीरियसली, दीज आर सीरियस वायोलेशंस, ये इट्स नॉट अ जोक। और जितनी भी बार रिमाइंडर्स करें, कुछ भी करें, इट्स नॉट ईजी, लाइक आप यू आर प्लेइंग विद अ फायर इज नेवर अ जोक, राइट। तो जब भी कोई आपको सिक्योरिटी वॉलंटियर या कुछ आपको कहे कि भाई आप गाड़ी हटा लीजिए, डोंट रिस्पॉन्ड विद एन एटीट्यूड, अरे मैं तो सिर्फ अंदर दो मिनट के लिए जा रहा हूँ, या फिर सीधा इग्नोर कर देना और उसको पावर बताना, बिकॉज वो बेचारा वॉलंटियर अपना काम कर रहा है, जबकि वही वॉलंटियर खुद अपनी कम्युनिटी का बंदा है, राइट, अपना टाइम दे रहा है, अपना सब कुछ मैनेज करने के लिए मेहनत कर रहा है। और आप सोचिए, हम उसी पे अकड़ दिखाते हैं कि अरे चल रहे, कुछ नहीं होता, गाड़ी यहीं पे लगेगी, देख लूँगा ये वो। व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव? यू ट्राइंग टू प्रूव अ पावर ओवर सेटिंग अ कार ऑन अ पार्किंग लॉट, लाइक क्या है, राइट। एंड देन अगर सोचिए, अगर आपकी गाड़ी वहाँ खड़ी हो और अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाए और ब्लॉक कर दिया आपने, और एक फायर इंसिडेंट को बचाने से आपकी गाड़ी एक बीच में वहाँ पे खड़ी है, सोचिए उसके बाद का आफ्टर मैथ क्या होगा, आपके ऊपर क्या रिप्रिकॉशंस आएंगे, बिकॉज यू पार्क इलीगली रॉन्ग, कितना वो हाईलाइट होगा कि दिस पर्सन डिड नॉट हैव एनी सेंस हाउ टू पार्क, ही पार्क ऑन द फायर लेन। वो फायर वाले तो आपकी गाड़ी का कचरा ही कर देंगे, पहली बात तो तोड़ फोड़ के उसको हटा देंगे, मगर बाद में जो आपके ऊपर बैकलैश आएगा कम्युनिटी से, वो सोचिए कितना बड़ा होगा, नहीं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स कि भाई एंटाइटलमेंट होनी चाहिए, मगर इतनी भी नहीं कि भाई आप अपने घर के राजा जरूर हो सकते हैं, राइट, आप काउच पे बैठिए, फर्श पे बैठिए, जहाँ बैठिए, राइट, इट डजेंट मैटर, बट लाइक व्हेन यू आर आउटसाइड इट डजेंट वर्क आउट, देयर आर रूल्स। एंड इसीलिए आप देखते होंगे कि पार्कर्स रखते हैं, क्योंकि हमारी कम्युनिटी के बंदे, हमारे वॉलंटियर्स की, जो वो लोग काम करते हैं उनकी बात ही नहीं सुनते, देन यू ट्राई टू फाइंड अ
पेड पर्सन टू डू द जॉब, जो चीज़ फ्री में हो सकती है वो पे करके करनी पड़ती है. तो यू नो थिंक अबाउट इट, राइट? दिस इज नॉट समथिंग रॉकेट साइंस, लाइक व्हाट एवर आई एम सेइंग इट्स एवरीबडी कैन रिलेट टू इट. कि भाई लगा दो गाड़ी, देखी जाएगी, अभी चलो अंदर चलते हैं, कोई नहीं बोलेगा. अगर माइक में अनाउंस करेंगे, कई बार माइक में अनाउंस करके बोलना पड़ता है भाई आपकी गाड़ी, इसको हटाइए, अदरवाइज इज गोना बी अ सीरियस प्रॉब्लम. मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ. एक बहुत बड़ा इवेंट होता है यहाँ पे होली का, एंड समबडी पार्ट ऑन द फायर लेन एंड देयर वाज एन इंसिडेंट कमिंग एंड द फायर ट्रक कुडंट मूव, क्योंकि वो पार करके चले गए सेंटर ऑफ द स्ट्रीट में. एंड क्या करें, राइट? वी समहाउ मैनेज थिंग्स आउट, बट सोचिए अगर वो पूरा का पूरा इवेंट बंद करा देते हैं वो लोग, तो एक बंदे की गलती से 5,000 बंदे जो एंजॉय कर रहे थे खत्म हो जाएगा. Think about it. गाने वाने सुनिए, we'll be right back.

0: tune up your spider sense because Spider-Man Night is here with the North Carolina Courage this Friday, July 31st. Bring the whole family to First Horizon Stadium, where Courage will face off against Orlando Pride at 8 p.m. It'll be a super fun night for fans of all ages, with Spider-Man-themed activations, fun for the little ones, and a free Spider-Man Funko Pop for the first 500 fans to arrive. Don't miss Spider-Man Night with NC Courage. Tickets at tickets.nccourage.com.
1: तो जी हाँ दोस्तों, आई होप यू आर एंजॉइंग द शो बिकॉज आज थोड़ी तिखी तिखी कड़वी कड़वी बातें हो रही हैं, तो यू नो बट दीज आर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स टू टॉक, सो वी आर टॉकिंग अबाउट इट. ऑलमोस्ट दो घंटे होने, डेढ़ घंटे होने आ रहे हैं, तो आप सुन रहे हैं दिल से देसी विद मैन ऑन रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 पे. आप ऑल्सो यू कैन डाउनलोड द ऐप एंड लिसन टू दिस एनी टाइम 101.9 FM एंड 1490 AM, और यू कैन ऑल्सो कॉल मी एट 919-919-8595. तो आज हम बात कर रहे हैं सिविक सेंस की. चलो हम चलते जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे बात कर रहे हैं. तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अटायर, कपड़े, जूते, चप्पल, पब्लिक में इसकी क्या वैल्यू है और किस तरीके से हमें घूमना है. और ये थोड़ा सा यू नो इक्वली इम्पोर्टेंट है बिकॉज यू नो समटाइम्स व्हेन आवर पेरेंट्स एंड सम फोक्स आर कमिंग हियर, जो हम नवे आ रहे हैं, दिस थिंग्स मे बी वेरी कॉमन टू अस, क्योंकि यार वहाँ पर गर्मी होती है इतनी, फुटवेयर इज कम्प्लीटली डिफरेंट, हमारा एक सेंस वहाँ पर कम्प्लीट डिफरेंट है, यू नो अटायर डिफरेंट है, बट हर सोसाइटी का एक अपना तरीका तौर तरीका होता है. तो ये समझना जरूरी है राइट, कि हर जगह में एक अनरिटन ड्रेस कोड होता है राइट. यू ड्रेस एज पर द प्लेस वेयर यू आर गोइंग राइट. ड्रेस टू इम्प्रेस कहते हैं ना, जिस तरीके से वो चीज़ है राइट. तो अपना एक वो है राइट. आई मीन ऑब्वियसली इफ यू गो टू द टेंपल यू विल बी वेयरिंग समथिंग डिफरेंट विच इज़ ट्रेडिशनल, ऑफिस में तो एक प्रोफेशनल होता है, इवेंट्स पे फॉर्मल होता है, बट ये सब चीज़ें यू नो दूसरी कम्युनिटीज़ जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंटली आपको नोट करती हैं इन चीज़ों पे, बिकॉज यू नो योर व्हाट यू सी इज हाउ यू गेट परसीव्ड एंड व्हाट योर आउटसाइड इज व्हाट इट मैटर्स राइट. तो कई बार देखते हैं राइट, यू नो कि आई मीन आई हैव आल्सो सीन एंड नथिंग रॉन्ग लाइक बिकॉज दे डू नॉट नो अबाउट इट, कि इन अ कॉर्पोरेट ऑफिस समबडी इज वेयरिंग अ सैंडल राइट. जो हम वो जो इंडिया में पहनते हैं वो तरीके के, वो सैंडल पहन के हम ऑफिस में घूम रहे हैं, ये या फिर बहुत ही कैजुअल क्लोदिंग है. आप जाके देखिए रिसेंटली एक कम्युनिटी टारगेट करती है कि भाई हम कॉस्को में स्टोर्स में चप्पल पहन के चले जाते हैं, दैट इज़ बिकमिंग अ हाईलाइट नाउ ऑन सोशल मीडिया बिकॉज दिस इज़ नॉट नॉर्मल, उनकी सोसाइटी में ये चीज़ नहीं है. एंड व्हेन वी डू दैट अननोइंगली ये चीज़ हाईलाइट होती है एंड इट्स नथिंग रॉन्ग. आई मीन फुटवेयर कोई भी आप पहन सकते हैं, ऐसा कोई बिग डील नहीं है, बट जब इतना कुछ चल रहा है, माहौल गर्म है, उसमें ये चीज़ें भी फिर आ जाती हैं लपटे में राइट. तो यू नो यू स्टार्ट बी यू नो जजमेंटल होने की बात नहीं है, ये रिस्पेक्ट की बात है कि जहाँ का देश वहाँ का भेष कहते हैं ना, एक जैसा आप यू नो यहाँ पे जा रहे हो, आपको यू हैव टू चेंज योर अटायर, यू हैव टू चेंज योर हाइजीन. आपने सुना होगा कि लाइक यू नो आई स्मेल करी ऑल द टाइम फ्रॉम माय फ्रेंड एंड ऑल दीज थिंग्स कमेंट्स आते हैं राइट. आई मीन जैकेट्स में से यू नो स्मेल, ये दिस इज लाइक आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग न्यू, ये ओपनली है पड़ा, आप जाके देखिए. वी डोंट दीज पीपल डोंट बाय डिओड्रेंट्स चीप, ये सब कमेंट्स आते हैं, आप जाके पढ़िए इन चीज़ों को, बिकॉज पीपल परसीव दिस इज़ नॉट गुड. एंड देन पूरा एक यू नो एक स्टिग्मा हो गया है कि अगेंस्ट ऑल ऑफ दियर फोक्स. सो इट्स इम्पोर्टेंट टू यू नो समझना इन चीज़ों को, कि लाइक वी शुड बी यू नो थिंकिंग अबाउट इट, कि भाई वी आर गोइंग आउट इन पब्लिक, हाउ डू यू वॉन्ट पीपल टू सी यू, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. डू यू वॉन्ट बी अ क्लाउन और डू यू वॉन्ट बी अ जेंटलमैन, दैट्स ऑल इन योर हैंड्स. एंड यू ऑल्सो रिप्रेजेंट समबडी, लाइक यू आर रिप्रेजेंटिंग अ डायस्पोरा, हाउ डू यू वॉन्ट गो एंड रिप्रेजेंट योर सेल्फ. यू नो पब्लिक प्लेसेस पे जाना और यू नो फोन पे रिंग टोन बंद नहीं करना, इन चीज़ों में बहुत ऐसा सब कितना है राइट. लाइक यू नो अपने बच्चों पर यू नो सुपर अनसुपरवाइज छोड़ देना, इट इज़ लाइक अनबिलीवेबल. देर इज़ अ होल वीडियो आउट देयर टारगेट में फैमिली वेन एंड एंड आई मीन एनी बडीज कैन डू दिस, बट हम ही हाईलाइट हुए इसमें कि बच्चे ने पूरे के पूरे आइल के खिलौने फेंक दिए नीचे उठा के, एंड देन समबडी वाज शूटिंग वीडियो एंड देन दे गॉट सो मच लाइक यू नो इन पीयर प्रेशर. वो बेचारे कहे कि लाइक हो गया बच्चे ने कर दिया राइट, बट एटलीस्ट द पेरेंट्स कुड हैव सुपरवाइज्ड क्या कर सकते हैं. क्वाइट स्पेसेस में हम आवाज़ें कर रहे हैं, ऊँचे ऊँचे से बोलना, एयरपोर्ट में भी खड़े हैं तो बस सबको पता लगना चाहिए कि हम खड़े हो गए एयरपोर्ट में आके, बस ख़त्म हो गई बात. व्हाई डू यू सी एनीबडी एल्स लाइक डूइंग दिस, लाइक हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, व्हाई आर अवर पीपल डूइंग दिस, लाइक दे डोंट अंडरस्टैंड कि भाई हम कहीं पे खड़े हैं, यहाँ के नॉर्म्स तौर तरीके क्या हैं, कैसे होने चाहिए. एवरीबडी नोज इट बट दे फील लाइक अरे क्या हो जाएगा, जो होगा देखा जाएगा राइट. तो सिंपल रूल है लाइक अगर आपने अपनी यू नो ग्रैंड पेरेंट्स से देखा होगा लाइक जैसा जैसी जगह वैसे कपड़े, जैसा घर जैसी जगह वैसा व्यवहार राइट. कि लाइक यू हैव टू चेंज योर डीलिंग वेयर यू आर एंड हाउ यू आर, एंड ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बस यू नो हम खाली भूल गए हैं, हम भूल जाते हैं इन चीज़ों को और अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि लाइक अरे कौन देख रहा है, कौन बोलने वाला है, लाइक हम देख लेंगे जो होगा, एंड दैट इज़ वॉट इज़ हर्टिंग. छोटी सी चीज़ है देखो कितनी, इट्स लाइक अ सिंपल थिंग बट हाउ इज इट बीन प्रसीव्ड इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट. दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. कि चेयर पे पैर रख के बैठ जाना, खाने के टेबल्स पे बच्चे कूद रहे हैं राइट. इफ़ यू गो इन अ पार्क लाइक समबडी इज़ ईटिंग ऑन द टेबल एंड योर किड इज लाइक जंपिंग देयर, लाइक क्या है यार. सो वी आर ऑल एजुकेटेड पीपल, लाइक यू नो एजुकेटेड डायस्पोरा विद द हाइएस्ट इनकम डूइंग दिस पुट्स यू नो a really bad impression. So I wanted to just highlight that ke bhai yaar ise band kariye right, because this is common, you have seen it, a lot of people have seen this. Be vigilant and stop it, and if somebody is doing it aapke friends mein kuch ho raha hai, circle mein ho raha hai, just politely baat karke ise band kijiye, because it's not good. And sometimes we are so underdressed in some places like you know sacred places ki unko kehna padta hai ki bhai you know sorry we can't let you in, magar kisko bolne ki naubat hi kyu aa rahi hai. So kahani wale sunen, then we'll be right back.

तो जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं दिल से देसी विद वैन। वी आर ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स इन टू द शो और अभी भी बहुत कुछ बोलना बाकी है, बट यू नो आई मे हैव टू कट इट शॉर्ट क्योंकि टाइम की कमी है। एंड आई विल स्पीड अप द शो अ लिटिल बिट मोर विद दिस। तो आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 पर, और यू कैन ऑल्सो ट्यून इन ऑन 101.9 FM और 1490 AM। चलिए अब बात करते हैं द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग, ये टिपिंग स्कैम, राइट? क्या ये हमारी जिम्मेदारी है? लॉट ऑफ पीपल कॉल इट अ स्कैम, लॉट ऑफ पीपल से इट नो। ऑलमोस्ट एक पोलिटिकल पार्टी की तरफ हो गया है कि लाइक देर इज अ राइट एंड लेफ्ट वर्सेस सिचुएशन होती है इसमें। तो यू नो हर इंडियन अमेरिकन घर में ये टॉपिक डिस्कस होता है, और यह तो हुआ होगा, राइट? तो पिछले कुछ अभी की बात है, यू नो एक वायरल मोमेंट हुआ था, उसी का रेफरेंस दूंगा मैं, तो उससे थोड़ा बहुत एक यू नो पीपल कैन रिलेट टू दिस। तो एक इंडियन यूट्यूबर, राइट, ईशान शर्मा न्यूयॉर्क गए, रेस्टोरेंट में कहीं खाना खाया, $45 का बिल बना था, उन्हें $50 दिया और उन्हें चेंज वापस नहीं मिला क्योंकि वेटर्स ने कहा कि टिप मैंडेटरी है। और उन्होंने पूरा इंसिडेंट को रिकॉर्ड किया, टिपिंग कल्चर बना के स्कैम बोल के, और उसको वायरल कर दिया, और वो डिबेट चल पड़ी। अब डिबेट ऐसी चलती है कि दो धड़ बन जाते हैं ऑलवेज, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो सही वाले और ये वाले और वो वाले दोनों की आपस में बहस शुरू हो जाती है। तो एक तरफ तो लोग वो हैं जो कह रहे हैं कि अमेरिका में टिपिंग कल्चर फ्लॉड है, रेस्टोरेंट्स वर्कर्स को फेयर वेज मिलनी चाहिए, कस्टमर पर बर्डन आता है। जनरली ये वैलिड पॉइंट है, आई एग्री विद दैट टू सर्टन एक्सटेंट, पर बहुत से अमेरिकन इकोनॉमिस्ट और इन्होंने भी राइट ग्रुप में इसके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक हार्डर ट्रूथ ये भी है कि चाहे सिस्टम फ्लॉड हो, राइट, या नहीं हो, जब तक यहाँ का सिस्टम चल रहा है, वेटर्स जो अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा टिप्स से कमाते हैं, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में स्पेशली जो लोग इंडियन ओन्ड या इंडियन फ्रीक्वेंटली रेस्टोरेंट्स जो होते हैं जहाँ पे काम करते हैं, उनकी कॉमन कंप्लेन ही यही होती है कि भाई यू नो इंडियन आवर पीपल डो नॉट टिप ऑन एवरेज दूसरे कस्टमर्स के कंपैरिजन पे, तो फिर वो सर्विस भी ऑब्वियसली आपको ख़राब मिलेगी। और जब सर्विस ख़राब मिलेगी देन आप यू फील लाइक यू नो लेट्स गो ऑन इंटरनेट एंड जस्ट यू नो ब्लास्ट इट। एट दी एंड ऑफ द डे जब आप सर्विस को खाना रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मगर एक जो आपका ट्रांजैक्शन जो होता है, जो आपको खाना ला के देता है, वो एट द एंड ऑफ द डे सर्वर ही होता है। चाहे कितनी भी बड़ी एस्टैब्लिशमेंट में बैठिए, कुछ भी करिए, द गाय हु सर्विंग इज व्हाट ऑल मैटर्स, राइट? तो एज एन ये एक अप्रिशिएशन, एक कल्चर है, राइट, कि भाई यू नो आई अप्रिशिएट यू सर्विंग मी द फूड। तो वो उसके सामने इस कल्चर में पैसे की वैल्यू नहीं रखते, एक ह्यूमन की वैल्यू आती है सामने कि भाई यू नो थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी आउट एंड गिवन यू नो सेटिस्फाइंग मी विद द डिलीशियस फूड। तो दैट्स द पर्सन यू ट्रांजैक्टिंग विद, और वही चीज़ जरूरी है। तो कहीं लोग इसका रीज़न देते हैं कि यू नो इंडिया में टिपिंग कल्चर नहीं है, तो वी आर नॉट यूज टू इट 100%। लाइक हम एक फ्रूगल कम्युनिटी हैं, सेविंग्स प्रायोरिटी है, ये कल्चरल कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। लेकिन यू नो अब हम जहाँ रह रहे हैं, इस सिस्टम का फ़ायदा उठा रहे हैं, जहाँ पे अच्छी सर्विस है, अच्छा फूड है, अच्छी जगह है, उसकी कॉस्ट है, तो उस सिस्टम का कोई अनरिटन रूल्स भी होते हैं, एंड उसको भी रिस्पेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। यू नो इट्स द अदर वे अराउंड। आई वेंट आफ्टर सो मेनी ईयर्स, तो मैं पहली बार गया इंडिया में, तो आई वॉज यूज टू इट एंड आई वॉज टिपिंग, और मुझे रोक देते थे लोग कि व्हाई आर यू गिविंग दिस मच, एंड आई वॉज लाइक क्यों, लाइक व्हाट्स द प्रॉब्लम, लाइक आई कैन अफोर्ड एंड दिस गाय डिड अ फैंटास्टिक जॉब, ही शुड बी टिप्ड। अगेन आई एम नॉट फॉर और अगेंस्ट इट, आई एम जस्ट सेइंग कि भाई यू नो एक चीज बनी हुई है, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं, ये परसेप्शन की बात भी हो जाती है। जब रेस्टोरेंट स्टाफ जो होता है, जो रोज़ हमें सर्व करते हैं, उनके बीच एक रेपुटेशन बन जाती है कि लाइक अरे यार यू नो व्हाट दिस इज इंडियन टेबल, आई मीन दिस इज द आई डोंट वांट टू गो सर्व, यू नो यहाँ पे टिप नहीं मिलेगी, ये होता है। आई मीन लॉन्ग लॉन्ग टाइम बैक आई वर्क इन द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री एंड आई नो दिस व्हाट हैपेंस। तो यू नो अगेन इफ यू हैव समथिंग एंड आप कहीं पे जाके, मैं नहीं कह रहा कि भाई आउटरेजियसली जस्ट नॉनसेंस चीज़ों पे, आजकल जब आपके सामने वो स्क्रीन रख देते हैं जहाँ पे कोई सर्विस ही नहीं मिली और आप उस पर टिप दे रहे हैं, बट यू नो हर जगह पे हो गया है ये कल्चर, देर इज़ द बैलेंस विच इज़ नीडेड 100% अबाउट इट, बट आप इसको कम्प्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते। यू जस्ट कैन टर्न योर ब्लाइंड आई एंड से यू नो वट सॉरी आई एम नॉट गोइंग टू पे एनीथिंग, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है।
इट्स नॉट गुड राइट. तो यहाँ मैं कोई लेक्चर नहीं दे रहा राइट, यू नो आई डोंट वांट टू गिव एनी लाइक, मैं कोई यहाँ पे ज्ञान नहीं दे रहा कि भाई आप टिप करिए, ये सबको पैसे दीजिए. बट खुद समझ के देखिए कि लाइक यू नो टिपिंग कल्चर भी कंफ्यूजिंग है यहाँ पे, स्पेशली जब यू नो बड़े होके हम ग्रो हुए वहाँ पे ये कल्चर नहीं था. लेकिन अगर हम जानते हैं कि यहाँ ऐसा होता है और यहाँ पे उसके हिसाब से ही फिर हमें प्लान करना चाहिए. अगर हम बाहर जा रहे हैं खाने के

करने का, स्पेशली देयर सम फोक्स वर न्यू, इवन व्हेन आई वाज न्यू आई डिड नॉट नो अबाउट इट, बट दिस इज अ कॉमन इशू जिसमें यू नो हम हाईलाइट होते हैं बहुत ज़्यादा. यस, बचाइए, पैसे बचाइए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट समटाइम्स यू ऑल्सो हैव टू गो विद द फ्लो कि उस जगह के तौर तरीके क्या है उसको अपनाना भी जरूरी है. यू जस्ट कैनॉट टर्न अ ब्लाइंड आई ऑन इट बिकॉज किसी का घर या किसी की जॉब ही उसी वही है कि वो आपको बेटर सर्व करे और वो दो पाँच पचास सौ डॉलर लेके अपना घर चलाए, राइट? तो वेन यू कैन अफोर्ड $100 फूड, प्लीज ट्राई टू बी जेनरस एंड यू नो गिव इट आउट. तो दैट हेल्प्स, दैट गोज लॉन्ग वेज, दैट ऑल्सो मेक समबडीज लाइफ ईजियर. तो यू नो अगेन wanted to talk about this tipping one because this is the controversial one, but I thought like, you know, why not? Because I've seen it. मैंने देखा है कि एक टेबल्स पे 15-10 लोग हैं और बेचारे ने 100 प्लेटें उठा के वो लाते हैं, लेके जाते हैं, करते हैं. इट्स अ गेस्चर ऑफ अप्रिशिएशन विच गोज लॉन्ग वेज, राइट? चलो गाने वाने सुनिए, विल बी राइट बैक.

0: तो जी हाँ दोस्तों, वर ऑलमोस्ट कमिंग क्लोज टू 2 आवर्स इन द शो. आप सुन रहे हैं दिल से देसी विद वैन ऑन रेडियो नायरा 99.9 FM HD4, 101.9 FM पे आप भी ट्यून कर सकते हैं, और 1490 AM ऑन EM फ्रीक्वेंसी, और आप ऐप से भी सुन सकते हैं. इफ यू गो एंड डाउनलोड द रेडियो नायरा ऐप और ऑन द वेब ब्राउजर लिंक, यू कैन ऑल्सो लिसन थ्रू दैट. लाइन्स आर ओपन, यू कैन ऑल्सो कॉल मी 919-999-8595. I hope you're enjoying the show because this is, you know, a touchy topic, a spicy one, दिल को चुबाने वाला topic है, but why not to talk about it? So I may go a little bit over today because I want to finish this on a good note, I'm running out of time. So अब next topic पे चलते हैं, right? इसे मैं कहता हूँ डब्बा gang, घर के लिए pack कर लो. तो यू माइट हैव सीन दिस इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस, राइट? तो ये एक बहुत ही रिलेटेबल टॉपिक है. फूड पैक कर लो, किसी भी वेडिंग में जाओ, बर्थडे में जाओ, कोई इवेंट पे जाओ, मंदिर में जाओ, कम्युनिटी इवेंट पे जाओ, बफे लगेगा, एक सीन हमेशा वहाँ पे शुरू होगा. दिखता है कि लोग अपने साथ आए हैं, खाना खा रहे हैं, कंटेनर्स बैग में भर के लाए हैं, और स्पेशली नवे कंटेनर्स साथ में होते हैं. प्लेट्स पैक कर लो, घर ले जाएंगे. दिस इज़ वॉट हैज़ पुश्ड मी टू डू दिस शो बिकॉज आई हैव सीन दिस इन द लास्ट फ्यू डेज के आई थॉट लाइक यू नो वॉट, ये तो अभी बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, राइट? एंड इफ़ वी आर डूइंग इट इन आवर इन साइड कम्युनिटी, हम कहीं होपफुली बाहर ये भी ना कर रहे हो, अगर ये हो रहा है कि यू नो डब्बे के डब्बे पैक कर लो. कभी तो होस्ट खुद ही कह देते हैं लाइक यू नो हे देयर इज़ लॉट ऑफ फूड लेफ्ट ओवर, टेक इट, यू नो दैट इज़ अंडरस्टूड, दैट इज़ अ जेनरोसिटी ऑन देयर साइड कि भाई यू नो खाना वेस्ट ना हो, प्लीज़ टेक इट, राइट? दैट इज़ अंडरस्टूड. बट जब हम बिना पूछे किसी की परमिशन लिए ये काम करना शुरू करते हैं, तो जो इवेंट का होस्ट होता होगा उसके बारे में सोचिए उससे क्या होता होगा. उनका पूरा हिसाब किताब बिगड़ जाता है. उन्होंने एक हेड काउंट के हिसाब से फूड ऑर्डर किया होता है. जो लोग घर के लोग होते हैं उनको खाना नहीं मिलता, जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उनको खाना नहीं मिलता. कितनी ही बार ऐसा हुआ है कि द डब्बा गैंग हैज़ केम एंड रेडेड द फूड एंड वी हैड टू गो आउट. रात के 2 बजे पिज़्ज़ा खाना पड़ रहा है जाके कहीं पे, या कुछ बर्गर वर्गर खाना पड़ रहा है काम करने के बाद. अगर कई बार तो खाना भी नहीं मिला है, तो ऐसा भी होता है. तो लाइक यू नो वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी दिस. एक इवेंट होस्ट है जो इतना मेहनत कर रहा है और बाद में यू नो आने वाले यू नो खाने वालों के लिए खाना कम पड़ जा रहा है जस्ट बिकॉज समबडी फेल्ट लाइक आई एम एंटाइटल्ड दैट आई वांट टू पैक द फूड एंड टेक इट होम. रेस्टोरेंट्स बफे में भी ये बहुत ही नोन इश्यू है. कई बार बफे रेस्टोरेंट्स में नो शेयरिंग, 1 प्लेट पर पर्सन, या नो टेक अवे बफे के रूल्स लिख दिए गए हैं, राइट? ये क्यों लिखने पड़े हैं? दिस वॉज अ कॉमन थिंग बैक इन द डेज कि भाई ये चीज़ नहीं चलती. बट जब ये शुरू हुआ तो वो मेन्यू के साइनेज के ऊपर लिख देते हैं कि भाई यू नो यू कैन डू दिस बिकॉज बिजनेस इज वांटेड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ कि भाई खाना भी महंगा है, राइट? इट्स नॉट लाइक ये अनलिमिटेड उगता जा रहा है और बनते जा रहा है, राइट? एवरीथिंग कॉस्ट मनी. तो उन्होंने भी दे आर फोर्स टू मेक दीज पॉलिसीज नाउ बिकॉज वी हैव टर्न टू स्टार्ट डूइंग दीज क्रेजी थिंग्स. ये चीज़ छोटी सी लगती है लाइक देखने में कि क्या है यार, थोड़ा खाना ही तो ले लिया कंटेनर में, यू नो. एंड हमारी कम्युनिटी जो है लाइक यू नो वी आर नो वेस्ट मेंटालिटी विच इज़ रियली गुड. जेन्युइनली बहुत अच्छी बात है कि भाई खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए. वी वॉन्ट टू सेव इट. अगर अब हम नहीं खा सकते बाद में जाके खाएंगे, ये दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग. लेकिन एक अच्छी वैल्यू जब हम गलत कॉन्टेक्स्ट में ले जाते हैं और दूसरे कई दूसरे यू नो के रिसोर्सेस को हम ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करते हैं, राइट? तब वही प्रॉब्लम बन जाती है कि एक कि ये आपका एक वर्च्यू बन गया है, ये एक परसेप्शन बन जाती है, राइट? आई मीन आई वोंट टेक एनी रेस्टोरेंट नेम ओनर हियर, बट उन्होंने बताया, राइट, मुझे कि उन्हें अपने बफे में साइन लगानी पड़ी कि प्लीज़ ओनली टेक व्हाट यू वांट टू ईट फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हमारे में कुछ रिसाइकलिंग का कल्चर ही नहीं है और वेस्टेज का कोई कल्चर नहीं है. भाई दबा लो, ले लो, उठा लो, लूट लो, ये सब चलता है हमारे दिमाग में, ये पहले थॉट्स आते हैं. क्योंकि कोई यू नो चार्ज टू टेक आउट नहीं होता, द कंटेनर्स नहीं देते हैं, और वीकेंड में बफे में स्पेशली फूड कॉस्ट इज़ वेरी हाई एंड द प्रॉफिट मार्जिन इज़ लाइक वेरी लो, क्योंकि बहुत सारी आइटम्स होती हैं, सब चीज़ें होती हैं. अगेन आई वॉन्ट गेट इन टू दैट राइट, पर आयरनी है कि हमारी कम्युनिटी का ही बंदा हमारी कम्युनिटी के लोगों के लिए रूल्स बनाने पर मजबूर हो गए हैं कि भाई इसी ये इस काम को बंद कीजिए राइट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू नो इट डजंट वर्क आउट इन अ वे हाउ इट शुड बी गोइंग राइट. मैंने कितनी बार देखा है कि भाई खाना है उठा के पैक करके गाड़ी में रख लो, पीपल आर इन द लाइन, दे वॉन्ट टू प्लेट्स जस्ट बिकॉज कि एक में कम डाल दिया तो वापस नहीं आना पड़ेगा लाइन में खड़े होने के लिए, दो प्लेट उठा लो. रिसाइकलिंग का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है. लाइक मैंने कई बार देखा है कि वन वी गो एंड ईट आउट इन बड़े बिग इवेंट्स में, उन प्लेट्स को स्टैक करे तो सारा का सारा जो 1000 प्लेट जो होती है वो एक ट्रैश बैग में आती है, और अगर आप उसको स्टैक करके ना उसको रिसाइकल करें तो उसके ऊपर कम से कम 15 से 20 ट्रैश बैग जाते हैं उस डस्टबिन के अंदर, विच इज़ कम्प्लीटली अनरिसाइकलेबल. तो आई मीन ये सब चीज़ें हैं यार, लाइक आई मीन इट इज शेम टू से बट दिस इज़ वॉट हैपन्स. और आपने देखा होगा कि यार, और आई डोंट फील, मैं जेन्युइनली नहीं फील करता कि जिस तरीके से वो डब्बे बनाए जाते हैं कि कितना खा लेगा कोई इंसान और कैसे खा लेगा, बट इट स्टिल हैपन्स. मैं आई वॉन्ट नेम बट आई वॉन्ट से एनीथिंग बट आई जस्ट सॉ इट लास्ट नाइट. जो खाना था वो कहीं पर जा रहा था गरीबों के लिए जो रेस्क्यू सेंटर में, एंड देन इवन आफ्टर सेइंग पीपल डिडन्ट लिसन एंड दे जस्ट स्टार्टेड पैकिंग दैट फूड. तो लाइक हम सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, हम अमेरिका में आ गए, हम बड़े घर में रह रहे हैं, गाड़ियां हैं, टेस्ला है, यू नो ग्रोसरी स्टोर्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, पर फिर भी हम फूड कौन सा उठा रहे हैं जो गरीबों के लिए जा रहा है. आई मीन अनबिलीवेबल इट वॉज फॉर मी, एंड इट वॉज अ हार्ट ब्रेकिंग टू सी दैट, एंड दैट्स वाई आई चोज टू डू दिस शो टूडे कि भाई प्लीज, एंड आई एम नॉट सेइंग एवरीबडी डज इट, आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आप देख रहे हैं तो स्टॉप इट, बिकॉज यू हैव टू कॉल स्पेड अ स्पेड एंड यू नो कॉल इट आउट एंड स्टॉप दिस. बट अगेन यू नो अगेन इट्स अ गुड थिंग, फूड वेस्ट मत कीजिए, जितना चाहिए उतना लीजिए, बिकॉज बहुत से लोग हैं जो एक टाइम का भी खाना नहीं अफोर्ड कर पाते, ना ही उनको मिल पा रहा है, और आप लोगों को इतना बढ़िया सब कुछ मिल रहा है और हम उसको अब्यूज़ कर रहे हैं. सो दैट्स द नेचर, और हम कर का रहे हैं भगवान के घर पर, जहाँ पर हम भक्ति करके उठे हैं, पूजा करके उठे हैं, भगवान से कुछ मांग के उठे हैं, सब कुछ बढ़िया कुछ कथा सुन के उठे, और वहीं पर हम ये काम कर रहे हैं. सो अगेन थिंक अबाउट इट ट्वाइस, यू नो इफ यू सी दिस प्लीज़ थोड़ा सा समझिए और थोड़ा सा देखिए कि यू नो व्हाट हैपेंस टू द पीपल हु आर ऑर्गेनाइजिंग दिस. उन वो भी हैं, उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है कि खाना कम पड़ेगा तो क्या करेंगे राइट, और खड़े पैर पे हमको खाना बनाना पड़ता है बिकॉज एवरीबडी शुड बी एबल टू बी फेड, और बचता है यू कैन ऑफकोर्स टेक इट, बट ये जो डब्बा गैंग वाला कल्चर है इट इज़ समथिंग वेरी पेनफुल टू मी, आई हैव सीन दिस ओवर द ईयर्स. अगेन ये आदतें जाएंगी नहीं, बट आई थिंक इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू कीप हाईलाइटिंग दिस थिंग्स. तो गाने वाने सुनिए, आई विल बी राइट आफ्टर द ब्रेक.
1: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो. हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो.

0: तो जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं दिल से देसी विद मैन। आई एम गोइंग एक्सटेंड द शो फॉर फ्यू मोर मिनट्स बिकॉज आई वांट टू इस टॉपिक को क्लोज करना बहुत जरूरी है एंड आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। जितना मुझे पता था कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कवर दिस टॉपिक इन टू आवर्स, बट आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट। तो चलिए हम चलते हैं एंड की तरफ, राइट? तो आई वांट टू जस्ट कॉल आउट अ फ्यू थिंग्स, राइट? कि एक इंपॉर्टेंट बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ इस एपिसोड में कि मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि इंडियन कम्युनिटी ही सिर्फ सिविक सेंस में लैक करती है, हम ही सिर्फ हैं। इट्स नॉट अबाउट दैट एट ऑल। ये मेरा गोल ही नहीं है इस चीज़ को बात करने का। हर कम्युनिटी, हर कल्चर में अपनी कोई अच्छाइयाँ बुराइयाँ हाईलाइट्स होती हैं, चीज़ें होती हैं। लेकिन हम जब जब हम किसी नए देश में हैं, किसी नई जगह पे हैं, कहीं माइनॉरिटी में, स्पेशली हम जहाँ पे रह रहे हैं उसके रूप में जब हम हमारी हैं चीज़ें, तो हमारा एक बिहेवियर ही नहीं, सिर्फ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम अपनी पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं बिकॉज वी आर स्मॉलर इन नंबर, राइट? तो वो रिप्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली आ जाती है। जब एक लोकल कोई यहाँ पे बोर्न पर्सन होगा, वो जब देखता होगा अमेरिकन या कोई भी हो, राइट? तो वो देखते होंगे कि जैसे हम ये जो रूल्स ब्रेक करते हैं, सब हमारे बिहेवियर्स देखते हैं इन चीज़ों में, तो वो यही सोचते होंगे कि जैसे फायर हाइड लाइन में गाड़ी लगा के चले गए, राइट? तो वो यही सोचता होगा कि ये एक इंडिविजुअल नहीं है, राइट? ये सोचते होंगे कि ये लोग ही ऐसे हो जाते हैं, ये ऐसे ही हैं, और ये अनफेयर है। लेकिन अगर आप देखिए तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि ये स्टीरियोटाइप एक दो इंसिडेंट से बन जाता है, और सालों लगते हैं इस स्टीरियोटाइप को हटाने के लिए लोगों के दिमाग से। देयर इज अ होल साइंस बिहाइंड इट, राइट? कि वो एक दो बार देखते हैं, अरे यार ये भी ऐसे करा, ये भी ऐसे करा, ये भी, वो सोचते हैं ये सभी ऐसे हैं, राइट? और फिर इसका एक स्टीरियोटाइप बनता है। तो लाइक जैसे आपने देखा होगा, वो फ्रिस्को टेक्सस में बहुत हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई है, और जो टाउन काउंसिल की मीटिंग्स में जो वहाँ पे जो एपिसोड आप देखते होंगे यूट्यूब में सब जगह पे, जहाँ पे कम्युनिटी मीटिंग्स में वो आ रहे हैं और अपनी इंडियन कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, लोगों को मॉक कर रहे हैं, एक्सेंट को मॉक कर रहे हैं, लिटरिंग की वीडियोज़ बता रहे हैं, हाइजीन इश्यूज बता रहे हैं, 100% वो मॉकरी गलत है बिकॉज इट्स अ हेट व्हाट यू आर ट्राइंग टू स्प्रेड, राइट? एवरीबडी इज नॉट लाइक दैट। लेकिन अगर हम ऑनेस्टली देखें तो ये स्टीरियोटाइप्स कहीं ना कहीं से आए हैं बिकॉज वी डिड दोज एक्शंस इज वेयर इट केम फ्रॉम। हमने मौका दिया है किसी को, राइट? तो जब हमारी कम्युनिटी कुछ लोग जेन्युइनली ऐसे बिहेवियर दिखाते हैं, तो ये स्टीरियोटाइप को फ्यूल मिल जाता है एक तरीके से। एक समबडी गेट्स एन fire, somebody is getting an option to get a fire on the fuel, और फिर ये पूरी कम्युनिटी पर थोप दिया जाता है कि ये जो है ये ऐसे ही हैं, ये दिस इज़ रॉन्ग, राइट? आई ट्रूली बिलीव इन दैट कि दिस इज़ रॉन्ग। ये रियालिटी है जिसमें हम रह रहे हैं कि भाई कई लोग कुछ गलत करते हैं तो वो पूरा स्टीरियोटाइप हो जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है, राइट? इज द ब्लेम गेम नहीं है, सिर्फ इतना है कि दिस इज नॉट अबाउट द ब्लेम गेम कि हम ही कर रहे हैं ऑल दीज थिंग्स, इट्स नॉट अबाउट दैट। इट्स अबाउट के इट्स अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स फॉर हर इंडिविजुअल, हर फैमिली, हर घर में खुद हम बात करें, थोड़ा सा इसके ऊपर काम करें और बच्चों को सिखाएं, पब्लिक प्लेस में आप अपने आप को खुद सीखिए कि भाई हाउ डू यू वॉन्ट टू बी सीन, एंड उतनी ही रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं कि जब जितनी हम घर में करते हैं, राइट? अब अपना घर जितना साफ रखते हैं उतनी हम पब्लिक प्लेसेस को भी साफ रखें, तो स्लोली ये पैटर्न बदल सकता है। लाइक थिंग्स, नथिंग इज़ लाइक ये चीज़ नहीं हो सकती, थिंग्स कैन चेंज। जॉइन सम ऑफ दीज इवेंट्स जहाँ पे आपको पता लगे कि एंड साइन अप फॉर वॉलंटियरिंग एंड सी कि भाई यहाँ पे कैसे साफ सफाई होती है, कैसे कचरा होता है। लुक फॉर सम सेवा आवर्स, वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन वट एवर ऑर्गेनाइजेशन यू बिलीव इन, बिकॉज वो जगह भी उतनी ही क्लीन अप होना इम्पोर्टेंट है जितनी आपकी पूजा और ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है, राइट? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप कचरा फैला के चले गए तो आपने भगवान को तो कचरे में ही छोड़ के चले गए आप बेसिकली। तो अगर कोई भी ना हो ये काम करने वाला तो फिर आपको वही जगह ख़राब मिलेगी। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, राइट? जस्ट इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो यहाँ पे पड़ी है, जो यहाँ पे ग्रो अप हो रहे हैं, वो हमें देख रहे हैं, दे आर वॉचिंग अस, एंड हम जो कर रहे हैं पब्लिक में वो उनके लिए नॉर्मल बनता जाएगा, राइट? इफ दिस विल जस्ट बिकम अ ट्रेंड एंड दे विल डू द सेम थिंग, राइट? तो अगर हम ट्रैश फ्लोर पे छोड़ के जा रहे हैं तो वो भी यही सीख रहे हैं कि अरे चलो कोई नहीं, छोड़ के जाओ, कोई इट्स नॉट अ बिग डील. अगर हम लाइन तोड़ रहे हैं तो वो भी सोचेंगे चलो यू नो मेरे डैड ने तोड़ी तो मैं भी तोड़ देता हूँ, इट्स नॉट अ बिग डील, राइट? रिस्पेक्ट से वो भी यही सीखेंगे, राइट? वट एवर यू गोना टीच देम, यू नो, आप कितने भी शास्त्र श्लोक सब कुछ पढ़ा लीजिए, हनुमान चालीसा बच्चा बोल रहा है बट काम वही कर रहा है तो फिर उसके आपने किया क्या, इट्स नो पॉइंट अबाउट दैट. तो ये चॉइस आपकी है, हमारी है, राइट? कि हर दिन हाउ यू वॉन्ट गो एंड चेंज दिस थिंग, हाउ यू वॉन्ट डील विद इट एंड लुक आफ्टर वट इज हैपनिंग अराउंड इन योर नेबरहुड इन योर इन योर इन योर सराउंडिंग्स. एंड इफ यू से समथिंग बी पोलाइट, ट्राई टू टेक action proactively and just you don't have to confront everything, let it go, but at some point it's also important to highlight this thing. So chalo gaane wane suniye, then I'll be right back for the closing and then we'll move on and we'll see you again next week.
1: Reminder alert, delay sparks online frenzy, fans fear about leaked valuable assets, let's know what happened. This is Bollywood Bliss with me, Bharti, on your tune frequency, Naira. And you know, fans were eagerly anticipating the unveiling of the much-anticipated trailer of Namit Malhotra's Ramayana at 8 a.m. today. San Diego Comic-Con, however late last night, producer announced on social media that the trailer will now be released globally at a later date. Disappointed fans have been flooding social media with overwhelmed reaction as soon as the news went viral. One Saipal Levy fan wrote, "Dear Namit Malhotra and the Ramayana team, we understand that a project as big as Ramayana can face unexpected challenges and delays. We assume there may be a genuine reason behind the trailer not being released as announced, but as part of the vast Saip and Levy fan network, we are deeply disappointed by the decision to postpone the trailer at the very last moment. We strongly feel that such an important announcement should have been handled with better planning and communication." I feel it. I totally feel it. I can resonate with it. Stay tuned for more. I'll be back only on Naira.

0: देयर आर सम थिंग्स जिसको करने से पहले वी गेट अ लॉट ऑफ फियर, लगता है अपने ऊपर डाउट होता है ना कि हमसे होगा नहीं होगा. रणबीर के साथ भी ऐसा हुआ, लेट मी टेल यू हाउ. This is Bollywood Bliss with me, Bharti, on your tune frequency, Naira. And you know, Ranbir Kapoor is currently busy introducing Ramayan to the global audience. The actor attended San Diego Comic Con on Thursday along with co-star Yash, director Nitish Tiwari, producer Namit Malhotra for a special panel on the film. On the sidelines of the event, Ranbir opened up about playing Lord Ram and admitted that he was filled with fear and self-doubt when the role first came his way. Recalling his first reaction after being offered the role, Ranbir said he wasn't sure if he was right person to bring Lord Ram to the big स्क्रीन. होता है यार, क्योंकि लॉर्ड राम भगवान है वो हमारे, एंड ही सच अ पर्सनैलिटी जो इतना आइडियल है, जो हर कुछ सही करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, और उनके किरदार को निभाना इट्स नॉट ईजी. बट ट्रस्ट मी, आई फील दैट रणबीर इज ब्लेस्ड. यू नो, कुछ तो उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, लाइक ही इज गेटिंग दिस ब्लेसिंग फ्रॉम लॉर्ड राम ओनली. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर.
1: नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर.
2: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस, बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट, ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स.
3: फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की चाट, फ्लेवरफुल समोसा चाट, टू द सिग्नेचर सोल दाल बुखारा,
2: एंजॉय फ्रेश सिजलिंग वेज एंड नॉन वेज स्टार्टर्स पेयर्ड परफेक्टली विद ओवन फ्रेश चूर चूर नान मेड विद लव एंड फ्रेश इंग्रेडिएंट्स.
3: प्लानिंग योर बर्थडे, वेडिंग, ग्रेजुएशन पार्टी, कॉर्पोरेट गैदरिंग और फैमिली सेलिब्रेशन,
2: ask about customized catering menus at reasonable prices crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
3: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
2: Whether it's dinner with family, chai with friends or your next big event, Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors, experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
4: Do you desire for contemporary and classic jewelry designs to fit every occasion? Khanna & Sons Jewelers has you covered for all your jewelry needs. We craft the purest 22 karat gold and 18 karat dazzling diamonds jewelry with top quality and finish. We offer best value in jewelry along with top craftsmanship and fair making charges. Gold buyback, easy 12 months interest free financing available. Come see us for all your jewelry needs at Khanna & Sons Jewelers in Cary, North Carolina, or call us at 919-388-3888.
5: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरी डे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रचा बंडा, एक बार आए
6: तो 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM. पक्का देसी, पक्का लोकल.

0: यार उदित नारायण की जो वायरल किसिंग कंट्रोवर्सी सीन थी उसको तो मैं भुला ही नहीं भूल पाती हूँ. एवरी टाइम आई वॉच उदित्स फेस वो किस्सा याद आ जाता है. इट वॉज सो ड्रामेटिक. दिस इज बॉलीवुड ब्लिस विद मी भारती ऑन योर ट्यून फ्रिक्वेंसी नायरा. यू नो उदित नारायण मेड हेडलाइंस इन 2025 आफ्टर अ वीडियो फ्रॉम वन ऑफ हिज लाइव कॉन्सर्ट वेंट वायरल. द क्लिप शोड द सिंगर किसिंग अ फीमेल फैन ऑन द चिकन लिप्स लीडिंग टू अ ह्यूज डिबेट ऑनलाइन अबाउट बाउंड्रीज एंड कंसेंट. व्हाइल द इंसिडेंट रिसीव्ड मिक्स्ड रिएक्शन सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य हैज नाउ शेयर्ड हाउ ही सपोर्टेड हिज फ्रेंड ड्यूरिंग द डिफिकल्ट टाइम. अभिजीत सेड ही स्टूड बाय उदित व्हेन द कंट्रोवर्सी बिकेम सीरियस एंड ट्राइड टू हेल्प हिम डील विद द सिचुएशन. ही रिवील्ड दैट ही एडवाइज्ड उदित नारायण टू ओपनली except what had happened instead of avoiding the issue. Abhijit said he reminded Udit that fans often show their love in different ways and felt there was no need to take the matter in different direction. This is the wisest advice one could tell you. Aur dost to hote hi isliye hain yaar aapke sare pareshaniyon ko dur bhagane ke liye, right? Stay tuned for more. I'll be back.
1: Sunte rahiye Radio Nara 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM. Pakka desi, pakka local.
2: What kind of Christmas is this? It's Christmas in July, peanut style, with the North Carolina Courage on Saturday, July 25th. Bring the whole family to First Horizon Stadium as the Courage take on the Utah Royals at 7:45 p.m. for a summer match day with a holiday twist. Enjoy letter writing to Santa, Peanuts-themed fun around the stadium, and a Courage Time Peanuts bucket hat giveaway for the first 500 fans through the gates. Don't miss Christmas in July with the Courage. Get your tickets at tickets.nccourage.com.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM 99.9 FM SD 44 1090 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

0: विजय थेरेपति का स्टारडम यार इतना ज़्यादा है, मतलब आई वंडर हाउ दे मैनेज टू चार्म द ऑडियंसेस. कैसे होता है उनसे ये, जितने भी साउथ के सुपरस्टार्स को देख लीजिए, फैंस आर क्रेजी अबाउट देम. This is Bollywood Bliss with me, Bharti, on your tune frequency, Naira. And you know, Bobby Deol has opened up about working with superstar and Tamil Nadu Chief Minister Vijay Injanannayagan. Speaking in an interview, the Animal Star praised Vijay's humility despite his immense popularity and also spoke about the unmatched fan culture in South Indian cinema. In a conversation with the Hollywood Reporter India, Bobby Deol said most of the Jananayagan was filmed on studio set because of Vijay's immense popularity. In fact, no work will happen if you take him on the street. He's that big, he said. See, this is what I was telling you कि मतलब कैसे हो गया ये, अपनी परफॉर्मेंस से उन्होंने इतना मोह लिया है सबको, लाइक पीपल आर क्रेजी. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, आई विल बी बैक ओनली ऑन नायरा.
1: सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 एफएम, 99.9 एफएम, एसडी 4 4090 एएम. पक्का देसी, पक्का लोकल.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: Tune up your spider sense because Spider-Man Night is here with the North Carolina Courage this Friday, July 31st. Bring the whole family to First Horizon Stadium where Courage will face off against Orlando Pride at 8 p.m. It'll be a super fun night for fans of all ages with Spider-Man themed activations, fun for the little ones and a free Spider-Man Funko Pop for the first 500 fans to arrive. Don't miss Spider-Man Night with NC Courage. Tickets at tickets.nccourage.com.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।
3: 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

चल क्या रहा है आखिरकार बॉलीवुड में, चलिए जानते हैं। दिस इज बॉलीवुड ब्लिस विद मी भारती ऑन योर ट्यून फ्रिक्वेंसी नायरा। एंड यू नो अजय देवगन साहब कमिंग फिल्म चौहान हैज लैंडेड इन कॉन्ट्रोवर्सी आफ्टर एक्टर मोहम्मद जीशान अयूब डिनाइड बाय एनी ओकेजन विद द प्रोजेक्ट क्लेमिंग हिज वॉइस वॉज यूज्ड इन द टीजर विदाउट हिज नॉलेज ऑफ हिज कॉन्टेक्स्ट। जीशान रोट ऑन एक्स, फ्यू वीक्स बैक अ फिल्म टीजर रिलीज्ड विद द ओपनिंग लाइन इन माय वॉइस आई विश टू पुट ऑन रिकॉर्ड दैट आई एम नॉट द पार्ट ऑफ द फिल्म इन एनी कैपेसिटी। आई वॉज आस्क्ड टू डबल लाइन विदाउट एनी रेफरेंस अ फ्यू मंथ्स बैक। आई डिड दैट इन गुड फेथ विदाउट आस्किंग for more as I knew the makers personally. He added that he objected after watching the teaser following which his voice was removed. He said after my strong objection the makers removed my voice from the teaser 15 days ago. He wrote adding that he would never be a part of any such project. The actor also expressed support for students protesting over the NEET paper leak writing. Kudos to their inspiring spirit. Jai Hind Jai Samvidhan. Meanwhile, Chauhan, directed by Niraj Yadav and starring Ajay Devgan, is scheduled to release on October 1st, 2027. Stay tuned for more filmy stories earlier.

Ishan Khattar backs the student protest with a powerful message. This is Bollywood Bliss with me, Bharti, on your tune frequency, Naira. And Ishan Khattar has joined the growing list of celebrities speaking out on the student protest. Sharing a note on Instagram, the actor expressed solidarity with the movement, called for voices to be heard, and said he is a student before a professional while praising the resilience of the country's youth. Actually, yaar, jo youth kar rahi hai, wo bahut zyada courageous hai. Unko apni future ke liye apna jo take hai, wo clear hai. बट आई थिंक उसमें जो चीज़ें हो रही हैं, पॉलिटिक्स चल रहा है, वो अच्छा नहीं है. आई होप कि ये प्योरली यूथ और उनके एजुकेशन, उनके बेटर एजुकेशन के लिए ही हो, बाकी सारी चीज़ें जो हाईजैक होकर आई हैं वो ना हो. वेल, इन दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम दी शो. अगली बार आपसे मिलूं. टिल देन टेक केयर ऑफ योर लवली सेल्फ. मेरी बात सुनिए. अमेजिंग शोज एंड सॉन्ग्स ओनली ऑन नायरा.

WCMC-FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।

0: Saudia, Alexander Noel and Sanvi Meghana all performing live in one spectacular show. Mark your calendars, Sunday, August 9th in Raleigh, North Carolina. Bring your family, bring your friends and be part of the biggest Pan India dance celebration of the year. Don't miss Prabhudeva live in Raleigh.
1: Presented by Fusion Vibes and Lime and Lemon Indian Grill. Media partner Radio Naira, your Indian community media network.
0: Prabhudeva live Sunday, August 9th in Raleigh, North Carolina. One legend, one stage, one unforgettable night.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पंडिरवाना नाइट्स एंड मैं हूं सबके दिलों का चिराग। मेरा नाम है आरजे पराग। 7 से 10 में रहता हूं आपके साथ, मिटाता हूं आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूं आपके मूड को रिफ्रेश। आज का दिन जो है वो बहुत ही पावन है, स्पिरिचुअल है। आज है आषाढ़ी एकादशी, पाउले चालती पंढरी चिवाट। विठ्ठल भगवान का आज दिन है एंड बहुत भक्ति से आज बहुत सारे लोग फास्ट रखते हैं। मेरे भी दिन की शुरुआत आज फास्ट रखने से हुई है एंड बहुत भक्तिमय शुरुआत मैंने दिन की करी है एंड बहुत ही पावरफुल एनर्जेटिक लग रहा है। ट्रस्ट मी, फास्ट रखा है मैंने मॉर्निंग से लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि मैंने कुछ खाया नहीं है। इट्स लाइक फलाहार तो चल रहा है लेकिन फिर भी जो एनर्जी भगवान देते हैं वो तो अलग लेवल की होती है। तो एंजॉय करते हैं आज का हमारा शो एंड स्पिरिचुअलिटी बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है एंड इस शो का ये पहला गाना मेरे सभी लिसनर्स के लिए। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम एचडी 411.9 एफएम 1490 एएम रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

बार भी है एंड आषाढ़ी एकादशी भी है, दोनों भी जो दिन है इतने प्यारे दिन एक ही दिन पे आए हैं, तो इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है। शुरुआत करते हैं हमारे ट्रायंगल एरिया की आज शनिवार की सबसे ताज़ा हलचल से। जी हाँ, कैरी डाउनटाउन पार्क में आज सुबह से ही 6th एनुअल समर वीकेंड मार्केट की शुरुआत हो चुकी है। भारी उमस और गर्मी के बावजूद आज हजारों स्थानीय लोग अपने परिवारों के साथ लोकल आर्टिस्ट के स्टॉल्स, लाइव म्यूजिक और फूड ट्रक का मजा लेने पहुंचे हैं, जिससे पूरे पार्क का माहौल जो है वो कड़क बन चुका है। मतलब ऐसी वाइब है ना, मैं आपको बताता हूँ कि यू कांट इमेजिन। बहुत अच्छी तरह से सारी चीज़ें चल रही है एंड लोग एंजॉय कर रहे हैं एंड आज का दिन स्पिरिचुअल वीकेंड और क्या ही कहूँ मैं, मज़ा आ रहा है। एंजॉय करते हैं अगला ये गाना। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा।

और आज के ये दिन के बारे में मैं बताना चाहूँगा तो बहुत सारे भक्त वारकरी जो रहते हैं पैदल यात्रा करते हैं पंढरपुर तक। इसकी मान्यता बहुत पुरानी है एंड बहुत सारे लोग लाइक भजन गाते हैं, अभंग जो रहते हैं वो गाते हैं एंड यू नो जो माहौल रहता है आप यूट्यूब पे देख सकते हैं पंढरी वारी, आप अगर टाइप करते हैं तो यू विल गेट एन आइडिया कि कैसा ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। बहुत लोगों को पता है और जो जानना चाहते हैं इस इवेंट के बारे में क्या होता है आषाढ़ी एकादशी वारकरी क्या होता है तो आप यूट्यूब कर सकते हैं तो यू विल गेट एन आइडिया कि स्पिरिचुअलिटी किसे कहते हैं। बहुत सारे लोग पैदल बहुत सारे किलोमीटर्स लाइक चलते हैं एंड बीच में तो खबर भी आई थी कि विदेश से भी लोग इंडिया आ रहे हैं हमारे विट्ठल भगवान के दर्शन करने के लिए। सो इट्स लाइक ये बहुत अच्छा है यार, भक्तिमय दिन आज का है। एंजॉय करते हैं अगला ये गाना। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा पक्का।

रेडियो मेरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड मैं हूं पराग आपके साथ, 7 से 10 मैं आपके साथ रहता हूं। और दूसरी जो न्यूज़ आ रही है वो पानी से रिलेटेड आ रही है। अगर आप धरम काउंटी में रहते हैं तो पानी का इस्तेमाल ज़रा संभल कर कीजिए। लगातार पड़ रहे सूखे और पानी की कमी देखते हुए प्रशासन ने आज शनिवार से स्टेज 2 वाटर शॉर्टेज रिस्पॉन्स के तहत कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए है। आज से लॉन में पानी डालने और गाड़ियाँ धोने पर जुर्माना लग सकता है। प्रशासन ने नागरिकों

वेलकम बैक टू एवरीबडी। आपने इंजॉय किया ये गाना, गाना था वाकई में काफ़ी बेहतरीन एंड इस सैटरडे की वाइब जो है गाने ने सेट करके रखी है। बिजनेस और रियल एस्टेट की बात करें तो रिसर्च ट्रायंगल पार्क आरटीपी के नए हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए आज मतलब वीकडेज में इतनी भीड़ हो सकती है यार, तो आज तो वीकेंड है। आज वीकेंड पर लोगों का भारी जो है भारी भीड़ देखी गई है। 16 जुलाई से आरटीपी में हाउसिंग निर्माण लाइक आरटीपी 3.0 विजन फ्रेमवर्क के तहत पार्क के अंदर बनने जा रहे आलिशान अपार्टमेंट्स और टाउन हाउस की बुकिंग्स और ऑन साइट पूछताछ के लिए लोग सुबह से डेवलपर्स के ऑफिस पहुंच रहे हैं और क्या ही रिस्पांस मिल रहा है। मैंने उस दिन भी कहा था कि रातों रात रियल एस्टेट का जो सीन है वो बहुत अच्छा होते हुए हमें नज़र आ रहा है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा पक्का दिस।